मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि तदनुसार 12 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 MHz पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के बाद FM

0: पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। आज का चिंतन, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। अच्छी शिक्षा जीवन की नींव है जो भविष्य को मजबूत बनाती है। ये था आज का चिंतन और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास और असीम शक्ति का प्रतीक है, जो कलयुग में भक्तों के संकट दूर करने वाले इन्हें संकट मोचक माने जाते हैं। वे राम भक्त के रूप में शक्ति, बुद्धि और विद्या के देवता हैं, जिनकी उपासना से मानसिक शांति और निर्भयता मिलती है।

भक्ति का मुख्य आधार राम जी के प्रति पूर्ण समर्पण है, जिसमें उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। हनुमान जी को हम संकट मोचक भी कहते हैं, क्योंकि वे भक्तों के सारे दुखों और परेशानियों को दूर करने वाले हैं।

सच्चा भक्त वही है जो संकट के समय विचलित न हो और अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। हनुमत की भक्ति भी हमें निस्वार्थ रहने और विपरीत परिस्थितियों में भी साहस न छोड़ने की प्रेरणा देती है।

हनुमान जी की राम भक्ति समर्पण, निस्वार्थ सेवा और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। जहाँ वे शक्ति और ज्ञान के धनी होने के बावजूद स्वयं को श्री राम का दास मानते थे, उनकी भक्ति बिना किसी कामना के थी और अटूट विश्वास प्रमुख था, जिसके कारण वे चिरंजीवी होकर आज भी राम का नाम जपते हैं।

दृढ़ता, विश्वास और समर्पण की सीख देती है। संकट मोचक पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ संपन्न करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुने श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटुवचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

0: ए हरिहरन और उत्तरा केलकर के स्वर में आपने सुना श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, लीजिए सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों राम राम। भाइयों कृषि की बात में जिक्र करेंगे मिर्च फसल की देखभाल के बारे में। भाइयों मई का बिना चल रहा है, तेज गर्मी वाला वो है, लू वाला वो है, और भाई मिर्च फसल खातर काफ़ी ये संवेदनशील समय हम कह सके हैं। इस समय की भाई सही देखभाल की बात करें तो भाई नियमित रूप से पानी, कीट नियंत्रण और जो इसका पोषण है यानी कि जो पौधे हैं उन्हें सूखने से बचाने खातर हमने इसकी अच्छी देखभाल करके अच्छी पैदावार लेनी है। सिंचाई प्रबंधन की इसमें बात आओ पानी पात की, तो भाई इस बिन्न में तापमान ज़्यादा है, इस कारण से पौधे ने पानी की जरूरत इसमें ज़्यादा पड़े है। नियमित रूप से सिंचाई में इसमें भी 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हमने रहना है। और भाई यदि ड्रिप सिंचाई संभव तो भी ड्रिप का उपयोग हम कर सके हैं, इससे भी जो पानी है सीधा पौधे की जड़ में जाएगा और इससे भी मेरे पानी की बचत होगी और बेफालतू में जो हमारा पानी खराब इसमें जाओ है खुला पानी हम दे हैं उसमें खरपतवार भी बहुत सारे जमे हैं उनमें बचाव रहेगा और अच्छा एक पौधे का विकास ड्रिप सिंचाई से यदि हम मिर्च भजन लगा रखी हैं पानी पात दे हैं तो अच्छी एक पानी की बचत भी और पौधे की बढ़वार भी बढ़िया इसमें हो जाए है। भाई गर्मी का मौसम है, सिंचाई या तो हम सुबह जल्दी कर दें या फिर शाम के समय पर करें, दोपहर में जो सिंचाई है वो हम इसमें थोड़ा सा परहेज रखें। भाई इसमें मल्चिंग की बात आओ है तो भी पौधे के आसपास घास फूस या प्लास्टिक मल्चिंग बिछा के भी मिट्टी का जो तापमान है उसमें हम नियंत्रण कर सके हैं और भी इससे पानी की जो जरूरत है वह भी कम पड़ेगी। बाकी भाई जिस तरह हम पानी दें भाई गर्मी का मौसम है, खाद उर्वरक भी हम हैं तो इस अवस्था में जड़ते भी उसके खरपतवार नियंत्रण का जो काम है वो हम करते रहे। बिल्कुल जो जड़ा का सटके घास है भाई आगे चल के जिस तरह कई तरह के जो घास हैं सामक भी जामेंगे, सांटी भी जामेगी, सांटी का दिशा भी एक बार थोड़ा सा नानी नानी नुड़ाई गुड़ाई के बाद भी छोटी मोटी बच जाए है फिर कितना मकड़ी का जाल की डाली फैल जाए है भाई उसकी जड़ पकड़ के तोड़े पाछे वो नियंत्रण मास के है। तो शुरुआती दौर से जितने भी जो इस समय के घास फूस है पानी पात के बाद में नुड़ाई गुड़ाई हम कर दें ताकि भी हमारे पौधे में नमी भी बनी रहे और भी जो भी हम उसमें खाद उर्वरक डाले हैं वो खरपतवार ने ना मिल के सीधा हमारे पौधे ने मिले। भाई खाद की किस्म बात आओ पोषण की किस्म बात आओ तो भाई मई का जो हमारा बिन्ना है इसमें जो मिर्च है उसमें भाई फूल और फल दोनों बन रहे हैं इसलिए भी खाद इसमें बहुत ज़रूरी हो। लेकिन भाई हम बात करें कि देखो मिर्च जो हमारी फसल है इसमें यदि ज़्यादा रासायनिक छिड़काव विशेषकर यूरिया की हम बात करें डालें तो इसमें मरोड़िया रोग है, विषाणु रोग है, सफ़ेद मक्खी है, रस चूसने वाले कीड़े हैं वह ज़्यादा बढ़े हैं और भी उसके पौधे और पत्ते मरोड़िया रोग से ग्रसित होके ना उन पर भी फूल डटे ना फूल लग गए, जो फल हैं वो भी छोटे छोटे आएंगे और नीचे जड़ जाएंगे। इसलिए भाई देखो बार बार ये जिक्र है कि भी जड़ती हो उसके जो जैविक खाद है गोबर की गली सड़ी खाद है या फिर भाई वर्मी कंपोस्ट की हम बात करें केंचुए की जो खाद है 1 से 2 मुट्ठी प्रति पौधा यदि हम डालते हैं इसका हम प्रयोग करें हैं तो उसमें बहुत अच्छा एक परिणाम भी आओ है। और जो भाई अपना ऑर्गेनिक करे हैं देसी नुस्खे तो अपना खेती करे हैं विशेषकर मिर्च फसल की हम बात करें तो उनके जो बाजार भाव है वो भी हमने बढ़िया मिलेंगे, इससे भी पौधे सूखे भी कोनी, ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है एक जो भौतिक शक्ति है ज़मीन की वह इसमें बनी रहे और भी हम देखा कि अंधाधुंध जो हमने रासायनिक उर्वरक का भाई डाल के ज़मीन में ज़मीन की जो एक भुरभुरापन है वो ख़त्म कर दिया और ज़मीन में जो पानी सोखने की ताकत होया करती क्षमता होया करती वह इसमें ख़त्म होगी और जो भी वही कार्बनिक पदार्थ थे और जो हमारे मित्र कीट थे ज़मीन में केंचुआ जो कि हमारी फसल ने प्राकृतिक रूप से खाद दिया कर दे वो ख़त्म होने का कागार पा गए और उसके कारण ये है कि अंधाधुंध जो रासायनिक छिड़काव है उनकी बजाय जो हमारी प्राकृतिक खेती है उससे जुड़े और भाई जड़ते भी उसके रासायनिक छिड़काव की अगर बात आओ भाई रस चूसने वाले कीड़े इसमें ज़्यादा हों तो शुरुआती दौर से खाता पर नियंत्रण हमने कर दिया, खरपतवार नियंत्रण इसमें हमने कर दिया। इसके अलावा भी निमिस्टीन है, अचूक है जो कि नीम पर आधारित दवाई है उनका हम छिड़काव करें जो एक असली स्वाद हम कह सकें मिर्च का जो वास्तविक स्वाद है प्राकृतिक जो स्वाद है वो भी बना रहेगा और बाजार भाव भी हमने बढ़िया मिलेगा और इसके अलावा भाई जो एक भंडारण की जो क्षमता है वह भी इसमें बढ़ेगी। और भाई यदि ज़्यादा ये कीटग्रस्त हो रही है तो उस अवस्था में इमीडा क्लोरोपिड जो दवाई है उसका छिड़काव हम कर सके हैं, 1 ml दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव इसमें हमने करना है। यदि भी इस तरह से हम देखभाल करें तो मिर्च फसल से हम अच्छी पैदावार ले सके हैं, कृषि की बातों में भाइयों इतना है, आपका दिन शुभ हो।
0: आपने सुनी कृषि की बातें, सामयिक चर्चा का विषय था मिर्च फसल की देखभाल। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे, पहले संस्कृत में तत्पश्चात हिंदी व अंग्रेजी में, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासहि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामिरात् नीदरलैण्ड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्च देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामिरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there's a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
3: Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to United Arab Emirates UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from the BJP and one each from the AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sharma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be the NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the second consecutive term for Mr. Sharma as Chief Minister and third term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. The NDA, comprising the BJP, Ahom Gana Parishad, AGP, and the Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 120.

दिन में 12:30 पर सुनेगा एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम। एक और प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 पर। प्रातः 7:15 पर विविधा कार्यक्रम में सुनेगा वार्ता, विषय है पौधों की देखभाल। वार्ताकार होंगी सुश्री अलका।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनिएगा, प्रातः 7:30 पर। युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर संक्षिप्त चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आज चर्चा का विषय होगा मक्का लोबिया की चारे के लिए काश्त। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर प्रीति के साथ बातचीत का विषय होगा कुदरती खेती कितनी लाभदायक। शाम 7:00 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में डॉक्टर परमल चौधरी के साथ बातचीत का विषय रहेगा उच्च रक्तचाप कारण व उपचार।

और ये हैं संगीत के कुछ आकर्षण। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:25 पर, लोक संगीत कार्यक्रम प्रातः 8:30 पर। अपनी पसंद की रागनियों पर आधारित कार्यक्रम थारी पसंद का प्रसारण समय रहेगा रात 9:30। फिल्म संगीत आप दिन में 1:10 पर, शाम 7:30 पर और प्रातः 9 भी सुन सकते हैं।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत आज रात 10:30 पर प्रसारित होगा। एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे आनंद आश्रम फिल्म से कुछ गीत। ये थी जानकारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं ये वार्ता। विषय है पौधों की देखभाल। वार्ताकार हैं सुश्री अलका।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, पौधे केवल हमारे आसपास की हरियाली नहीं है बल्कि वे जीवन का आधार है। वे हमें भोजन, ऑक्सीजन, औषधियाँ आदि प्रदान करते हैं और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे मनुष्य और पशु स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं, वैसे ही पौधों का स्वास्थ्य भी विभिन्न कारणों से प्रभावित होता है। पौधों के प्रकार के अनुसार उनकी आवश्यकताएं और समस्याएं अलग अलग होती हैं। आइए इसे सरल रूप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाकीय पौधों की, जैसे नरम तने वाले और अल्पकालिक होते हैं, जैसे पालक, धनिया, सरसों आदि। ये पौधे पर्यावरणीय बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इनका स्वास्थ्य मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता, पानी की उपलब्धता और पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। यदि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है तो पौधों में पत्तियों का पीला पड़ना, वृद्धि में कमी और उत्पादन में गिरावट दिखाई देती है। ये पौधे कीटों और फफूंद जनित रोगों से भी जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए जैविक खाद, उचित सिंचाई और कीट नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं झाड़ियों की। झाड़ियाँ मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे होते हैं, जैसे गुलाब और गुड़हल। ये शाकीय पौधों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन इन्हें भी नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। इनका स्वास्थ्य उचित छटाई, पर्याप्त धूप और संतुलित पोषण पर निर्भर करता है। यदि पौधों को पर्याप्त धूप नहीं मिलती या छटाई सही ढंग से नहीं होती तो फूल कम आते हैं। आयरन की कमी से पत्तियां पीली हो जाती है, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। अब हम आते हैं वृक्षों पर। नीम, आम, पीपल और बरगद जैसे वृक्ष पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं, छाया प्रदान करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। हालांकि वृक्ष भी कई समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, मिट्टी का कठोर होना और जल की कमी या अधिकता। जड़ सड़न और सूखने जैसी बीमारियां धीरे धीरे

0: उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसलिए वृक्षों की सुरक्षा और देखभाल अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं लताओं और बेलों की। मनी प्लांट, अंगूर और कद्दू जैसे पौधे इस श्रेणी में आते हैं। ये पौधे सहारे के साथ बढ़ते हैं या जमीन पर फैलते हैं। इनके अच्छे विकास के लिए उचित सहारा, पर्याप्त स्थान और पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। घनी पत्तियों के कारण इनमें फफूंद संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। यदि इन्हें उचित सहारा नहीं मिलता, तो इनकी वृद्धि कमजोर हो जाती है। अब हम बात करते हैं औषधीय पौधों की। तुलसी, एलोवेरा, नीम और अश्वगंधा जैसे पौधे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनका स्वास्थ्य सीधे इनके औषधीय गुणों को प्रभावित करता है। यदि ये पौधे प्रदूषित मिट्टी में उगते हैं या रसायनों के संपर्क में आते हैं, तो इनके गुण कम हो जाते हैं। इसलिए इनकी जैविक खेती और उचित देखभाल अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं जलीय पौधों की। कमल और कुमुदनी जैसे पौधे जल में उगते हैं और जल पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनका स्वास्थ्य जल की गुणवत्ता, पीएच स्तर और प्रकाश पर निर्भर करता है। जल प्रदूषण और अत्यधिक पोषक तत्व इन पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रिय श्रोताओं, अब यह प्रश्न उठता है कि हम पौधों के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें। पौधों का स्वास्थ्य कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मिट्टी, पानी, प्रकाश आदि। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी पौधों के जीवन का आधार है। जैसे मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, वैसे ही पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए उपयुक्त और उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। मिट्टी केवल पौधों को खड़े करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन्हें पानी, पोषक तत्व, वायु तथा सूक्ष्म जीवों का सहारा भी प्रदान करती है। मिट्टी पौधों की जड़ों को मजबूती से पकड़कर उन्हें सीधा खड़ा रहने में सहायता करती है। यदि मिट्टी कमजोर या बहुत ढीली हो, तो पौधे आसानी से गिर सकते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व पौधों की वृद्धि, पत्तियों की हरियाली, फूल और फल बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी पौधों की जड़ों को आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध कराती है। अच्छी मिट्टी पानी को संतुलित मात्रा में रोक कर रखती है, ताकि पौधों को सूखा न पड़े और अधिक जल भराव से जड़ें खराब भी ना हो। वायु संचार। जड़ों को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद स्थानों में वायु रहती है, जिससे जड़ों का विकास सही ढंग से होता है। मिट्टी में कई लाभकारी जीवाणु, फफूंद और केचुए पाए जाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। मिट्टी का पीएच पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में पौधे पोषक तत्वों को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते। अधिकांश पौधों के लिए 6.5 से 7.5 pH उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी में मौजूद गोबर की खाद, कंपोस्ट और अन्य जैविक पदार्थ मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं तथा पौधों को दीर्घकालीन पोषण प्रदान करते हैं। मिट्टी को स्वस्थ रखने के उपाय। जैविक खाद का प्रयोग करें, फसल चक्र अपनाएं, रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग करें, जल भराव से बचाएं, समय समय पर मिट्टी परीक्षण कराएं। मिट्टी के बाद अब हम बात करेंगे पानी के बारे में। जल पौधों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों को घोलकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक होता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जल पौधों की कोशिकाओं को ताजगी और कठोरता प्रदान करता है, जिससे पौधे मुरझाते नहीं है। यह पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। बीज अंकुरण के लिए भी जल आवश्यक होता है। उचित मात्रा में जल पौधों को स्वस्थ, हरा भरा और उत्पादक बनाए रखता है, जबकि जल की कमी या अधिकता पौधों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम बात करेंगे प्रकाश पौधों के लिए किस तरह आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह पौधों के स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूर्य प्रकाश की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। यह पौधों की वृद्धि, फूल और फल बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उचित सूर्य प्रकाश पौधों की पत्तियों को हरा और स्वस्थ बनाए रखता है। यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। सूर्य प्रकाश की कमी से पौधे कमजोर, पीले और लंबे लेकिन पतले हो सकते हैं। उचित मात्रा में सूर्य प्रकाश पौधों को स्वस्थ, मजबूत और उत्पादक बनाता है। आइए अब बात करते हैं कि किस तरह तापमान और वातावरण पौधों के लिए आवश्यक है। तापमान और वातावरण पौधों की वृद्धि एवं स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं। प्रत्येक पौधे के लिए अनुकूल तापमान और स्वच्छ वातावरण आवश्यक होता है। उचित तापमान बीज अंकुरण, वृद्धि, फूल और फल बनने में सहायक होता है। बहुत अधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड पौधों की वृद्धि को रोक सकती है। स्वच्छ वायु पौधों को श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। आर्द्रता, वर्षा और हवा की गति भी पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। प्रदूषित वातावरण पौधों में रोग और वृद्धि संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अनुकूल तापमान और अच्छा वातावरण पौधों को स्वस्थ, मजबूत और उत्पादक बनाए रखते हैं। अभी हमने बात की कि पौधों का स्वास्थ्य किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं पौधों की सही देखभाल के बारे में। पौधों को स्वस्थ और हरा भरा बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल आवश्यक है। उचित देखभाल से पौधे तेजी से बढ़ते हैं और रोगों से सुरक्षित रहते हैं। पौधों की देखभाल के लिए सबसे अहम है उचित एवं नियमित सिंचाई। पौधों को आवश्यकता अनुसार पानी दे। बहुत अधिक या बहुत कम पानी नुकसानदायक हो सकता है। सुबह या शाम के समय पानी देना सबसे अच्छा होता है। मिट्टी की नमी देखकर ही पानी दे। पर्याप्त सूर्य प्रकाश पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धूप उपलब्ध करवाएं। उपजाऊ मिट्टी, अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी और जैविक खाद का प्रयोग करें। खाद और पोषण पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करें। महीने में एक या दो बार जैविक खाद का उपयोग करें। केमिकल खाद का प्रयोग सीमित रखें। कीट और रोग नियंत्रण पौधों की नियमित जांच करें और आवश्यकता पड़ने पर जैविक या सुरक्षित उपाय अपनाएं। पौधों पर कीड़े लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नीम का तेल या घरेलू उपायों से नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण अनावश्यक घास पौधों से हटाए ताकि मुख्य पौधों को पोषण मिल सके। छटाई सूखी और रोगग्रस्त शाखाओं को समय समय पर हटाए। सही देखभाल से पौधे स्वस्थ रहते हैं, अच्छी वृद्धि करते हैं और पर्यावरण को सुंदर एवं स्वच्छ बनाते हैं। सामान्य समस्याएं और समाधान पौधों की सही देखभाल के बावजूद कई बार कुछ सामान्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समय रहते उनकी पहचान और समाधान करना आवश्यक है, जैसे पत्तियों का पीला पड़ना। कारण अधिक पानी, पोषक तत्वों की कमी, धूप की कमी। समाधान उचित मात्रा में पानी दें, संतुलित खाद का प्रयोग करें और पर्याप्त धूप उपलब्ध कराएं। पौधों का मुरझाना कारण पानी की कमी, जड़ों का खराब होना। समाधान नियमित सिंचाई करें और जल भराव से बचें। कीटों का हमला कारण एफिड्स, सफ़ेद मक्खी इत्यादि। समाधान नीम तेल का छिड़काव करें या जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें। पौधों की वृद्धि रुकना कारण खराब मिट्टी, पोषक तत्वों की कमी। समाधान मिट्टी में जैविक खाद मिलाएं और समय समय पर उर्वरक दें। पत्तियों का सूखना या जलना, कारण अत्यधिक धूप, कम पानी। समाधान, पौधों को उचित स्थान पर रखें और आवश्यकता अनुसार पानी दें। फफूंद रोग, कारण अधिक नमी और खराब वायु संचार। समाधान, पौधों के बीच उचित दूरी रखें और फफूंद नाशक का प्रयोग करें। समय पर सही देखभाल और उचित उपाय अपनाकर पौधों को स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सकता है। विशेष सुझाव, पौधों को समय समय पर घुमाते रहें ताकि सभी भागों को समान प्रकाश मिले। गमले में पानी जमा न होने दें। इंडोर पौधों को कभी कभी धूप में रखें। पौधों को प्यार दें, उन पर ध्यान दें, वे भी जीवित हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि पौधे हमारे जीवन को हरियाली, शुद्धता और सकारात्मकता से भर देते हैं। यदि हम उनकी सही देखभाल करें तो वे हमें स्वस्थ वातावरण और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। धन्यवाद श्रोताओं।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। विषय था पौधों की देखभाल और वार्ताकार थी सुश्री अलका। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और हमेशा की तरह आकाशवाणी के कार्यक्रमों को भी लगातार सुन रहे होंगे। और आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम की बात करें तो कुछ विषय हमारे पास हैं, जैसे कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी पौधों का स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे बचपन पर बढ़ता मधुमेह का खतरा, इस विषय पर भी, और समय बचा तो एक और विषय भी हमारे पास है जिस पर हम चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ मधुर मधुर गीत भी हमने आपके लिए जो हैं वो निकाले हैं आपको सुनवाने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे लगेंगे। और कार्यक्रम के आरंभ में, जैसे कि अभी आपने विविधा कार्यक्रम में भी सुना पौधों के बारे में बातचीत, इसी विषय पर एक बार फिर से आपके साथ चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ आज हम मना रहे हैं। हर साल 12 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता बढ़ाना, जो कि भूख मिटाने, गरीबी कम करने, जैव विविधता की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी भी है। श्रोताओं, पौधे फूल किसको अच्छे नहीं लगते, हरियाली किसको अच्छी नहीं लगती, और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की घोषणा की। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 12 मई 2022 को। उद्देश्य पौधों की सुरक्षा करना, क्योंकि वे हमारे भोजन का 80% और ऑक्सीजन का 98% हिस्सा प्रदान करते हैं। यह दिवस कीटों और बीमारियों से पौधों को बचाकर पर्यावरण और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यह दिवस पादप स्वास्थ्य के प्रति यानी पौधों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने और कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक स्वस्थ ग्रह का निर्माण हो सके। आप और हम जानते ही हैं कि हमारे साथ साथ जो पौधों का स्वास्थ्य है वो भी अलग अलग कारणों से प्रभावित होता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पौधों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के निरंतर प्रभाव के कारण पौधों की जो वृद्धि है उसको बनाए रखने, उन्हें बढ़ाने और उनके विकास के लिए नई नई रणनीतियाँ बनाना और नए नए कार्यक्रम बनाना, यह पर्यावरण और मानव अस्तित्व दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में सहायता के लिए और लगातार विकास लक्ष्यों का एक समूह विकसित करने के लिए अलग अलग नीति

है जिसमें शामिल है पौधों का स्वास्थ्य भी। ये सभी लक्ष्य पौधों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित हैं। इस क्षेत्र में ज्ञान का निरंतर विकास करना और आने वाले समय में पौधों को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। लगातार बदलती जलवायु पौधों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव भी डालती है। अलग अलग घटनाएं पौधों में तनाव पैदा करती हैं। आप समझते हैं कि हम इंसानों में ही तनाव पैदा होता है, लेकिन पौधों में भी तनाव होता है यदि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी वृद्धि बाधित हो सकती है। वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं को भी बाधित कर सकती हैं, यानी कि खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, सूरज से धूप लेकर उसको भी जो पौधों का स्वास्थ्य है उससे वो प्रभावित होती है, और तनाव के प्रति उनकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता को भी कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन मिट्टी की नमी में बदलाव लाकर मिट्टी के सूक्ष्म वातावरण को प्रभावित कर सकता है, जिससे पौधों के स्वास्थ्य और उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो श्रोताओं, जरूरी है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम पौधों के स्वास्थ्य की देखभाल करें, उन्हें उचित वातावरण दें। वैश्विक तापमान में वृद्धि से पौधों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए सूखे और जंगल की आग जैसी जो भीषण मौसमी घटनाएं हैं, उनमें वृद्धि का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की प्रजातियों को नुकसान होता है। मौसम की गंभीर घटनाएं और परिवर्तन आक्रामक पौधों की प्रजातियों के प्रसार का कारण बन सकते हैं, जो देसी प्रजातियों पर हावी हो सकती हैं। इसके अलावा आक्रामक कीटों और पौधों के रोगजनकों के प्रकोप को भी बढ़ावा देता है इस तरह का बदलता हुआ मौसम। विकास का जो वातावरण है पौधों का, वो चुनौतीपूर्ण बनता है, और ये घटनाएं पौधों में तनाव पैदा करती हैं, जिससे पौधों का स्वास्थ्य, उनकी बढ़वार जो है वो प्रभावित होती है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जिनको हम रोक सकते हैं और जिनमें हम अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

श्रोताओ, जिस तरह से आपने अब तक सुना होगा कि जो मधुमेह है, शुगर जिसे हम कह देते हैं, वो लंबे समय से उम्र दराज लोगों की बीमारी माना जाता रहा है। ऐसा हमें भी लगता है, लेकिन चुपचाप अब वो बचपन की मासूम दहलीज लांघ चुका है। बदलती हुई जीवन शैली, मीठे स्वाद की बढ़ती आदत और शारीरिक सक्रियता में आई लगातार कमी ने बच्चों की सेहत को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां नवजात से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों में भी मधुमेह के मामले सामने आने लगे हैं। और कई जगह हॉस्पिटल्स में जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो इस बदलते खतरे को स्पष्ट करते हैं। हर महीने लगभग कुछ ना कुछ केस हर हॉस्पिटल में मधुमेह की दवाई लेने के लिए छोटे बच्चों के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें संख्या भले ही सीमित है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई सच्चाई ये है कि अब बीमारी उस उम्र में दस्तक दे रही है जहां बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए। टाइप 2 मधुमेह के मामलों में बच्चों में बढ़ोतरी और मुख्य वजह है जीवन शैली में बदलाव। और आप पर हम देख रहे हैं कि हमारा बचपन कैसा होता था और आज के बच्चों का बचपन कितना बदल गया है। स्नैक्स, मीठे पेय, फास्ट फूड बच्चों के खान पान का नियमित हिस्सा बनते जा रहे हैं। बार बार प्यास लगना, यदि बच्चे को इस तरह के लक्षण हो, ज्यादा भूख के बावजूद भी वजन ना बढ़ रहा हो, पेशाब की मात्रा बढ़ गई हो, अचानक वजन कम होने लगा हो, बच्चे का स्वभाव जो है चिड़चिड़ा होता जा रहा हो, या फिर बिल्कुल जो नवजात बच्चे हैं वो तेज तेज सांस लेने लगे, इस तरह के लक्षण यदि दिखते हैं तो ज़रूर ही डॉक्टर से संपर्क हमें कर लेना चाहिए और बच्चों के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यदि बच्चों को नियमित शारीरिक रूप से हम सक्रिय रखेंगे तो मधुमेह के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है ये। सुबह की धूप बच्चों को दिखाएं, शाम को खुले में खेलने दें, उन्हें दौड़ भाग में हिस्सा लेने दें, उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं खेल को, और बच्चों के शरीर को वह प्राकृतिक ऊर्जा इस तरह से मिलेगी कि बच्चे बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। और दवाओं से पहले बीमारी को रोकने में इस तरह की चीज़ें सहायक सिद्ध हो सकती हैं। कुछ बच्चों में मधुमेह का खतरा जन्म से ही मौजूद रहता है। यदि माता पिता में या किसी एक को यह रोग है तो बच्चों में इसका जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। नवजात बच्चों में पाए जाने वाला आनुवंशिक मधुमेह जीवन की शुरुआत से ही सतर्कता, नियमित जांच और निरंतर उपचार की जरूरत पैदा करता है, ताकि बच्चे के आगामी जीवन में आने वाली गंभीर जटिलताओं से बचा जा सके। तो हमें घर में बच्चों को पौष्टिक भोजन देना चाहिए, जिसकी बजाय आज हम पैक्ड स्नैक्स देने लगे हैं और इस तरह के फास्ट फूड बच्चों की थाली का हिस्सा बन रहे हैं। ये आदतें शरीर में अदृश्य मोटापा बढ़ाती हैं और आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह का रूप सामने आता है। तो बच्चों को खुले मैदानों में घूमने दें, खेलने दें, मोबाइल और स्क्रीन से उन्हें दूर रखें। बचपन वो उम्र है जहाँ हंसी की खनक और खेल की ऊर्जा होनी चाहिए, न कि दवाइयों और परहेजों का बोझ। माता पिता और समाज की ये साझा जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हम संतुलित खान पान, नियमित गतिविधि और सीमित स्क्रीन टाइम का अनुशासन दे पाएं। आज बरती गई सतर्कता ही बच्चों को भविष्य के बड़े स्वास्थ्य संकट से बचा सकती है। तो श्रोताओं, जो हमारी जीवन शैली में बदलाव आए हैं, उनका जो प्रभाव है वो हम पर ही नहीं, बच्चों पर भी पड़ने लगा है। उम्मीद है आप इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

श्रोताओ, एक और दिन विशेष हम आज मना रहे हैं और वो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्सें लोगों को स्वस्थ रहने में बड़ा योगदान देती हैं और यह दिन उनके योगदान को ही समर्पित है। साथ ही यह दिन नर्सिंग की जो पहली संस्थापक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनको श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। श्रोताओ, नर्सिंग दुनिया भर में स्वास्थ्य रखरखाव से संबंधित सबसे बड़ा पेशा है। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में नर्सों का बहुत बड़ा योगदान है। नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे मरीजों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और चिकित्सक के तौर पर फिट होने में मदद करें, और इस दिन को मनाकर नर्सों के योगदान को रेखांकित किया जाता है। इससे दुनिया नर्सों के महत्व से अवगत होती है और नर्सों को समाज में सम्मान की दृष्टि से भी हम देखते हैं। हर साल 12 मई को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो भारत सरकार ने की थी, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने। पुरस्कार से नर्सों को सराहनीय जो सेवा है उसको सम्मानित किया जाता है और हर साल ये पुरस्कार नर्सों को जो है वो दिया जाता है। अमेरिका में स्वास्थ्य और जो कल्याण विभाग के मंत्री थे, उन्होंने पहली बार नर्स दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया 1953 में। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वीड डी आइजन हावर ने की थी और पहली बार इसे साल 1965 में मनाया गया था। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर इसे मनाने की घोषणा की गई थी। इसी दिन यानी 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, तो उनके जन्मदिन को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर

पर मनाने का फैसला लिया गया। तो इस दिन बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जाते हैं और नर्स जो हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। तो श्रोताओं, इस दिशा में यदि कोई भी युवा अपना भविष्य बनाना चाहता है तो ये एक बेहतर रोजगार का अवसर हो सकता है। और नर्सेज की डिमांड तो विदेशों में भी बहुत रहती है, और यदि आपके भीतर सेवा भाव है, आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो रोजगार भी हो और साथ साथ आपके भीतर जो सेवा का भाव है वो भी पोषित होता रहे, तो आप इस पेशे को यानी नर्स के रूप में अपना भविष्य जो हो वो बना सकते हैं।

आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो।

मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह समारो, तुम आज मेरे संग हंस लो।

0: आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी
1: रात। बहुत ही खूबसूरत गीत, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। श्रोताओं देखिए, हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या सभी की आती रहती है, और समस्याएं ऐसी नहीं हैं कि लगातार टिकती हैं। समस्याएं आती हैं तो चली भी जाती हैं, लेकिन समाधान तो हमें खुद ही करना पड़ता है। कहते हैं ना कि सुख दुख जीवन के अनिवार्य हिस्सा है, और यह असंभव है कि कोई मनुष्य हमेशा सुखी रहे या सदैव ही दुख में डूबा रहे। एक स्थिति यदि विद्यमान है तो दूसरी की छाया भी निश्चित है। इन दोनों की दशा और दिशा एक दूसरे के बिना अधीन है, और सुखी होने के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। कोई अथाह धन से सुखी होता है, कोई भरे पूरे परिवार से, कोई ज्ञान के परिमार्जन से, कोई एकांत में सुखी होता है, तो कोई साधना में आनंदित होता है। लेकिन इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता, जिस प्रकार मौसम बदलते हैं वैसे ही आज का सुख कल दुख की चपेट में आ सकता है, और हमारा शरीर भी सदा एक सा नहीं होता। हम कितने ही सामर्थ्यवान क्यों न हों, आयु के साथ साथ शारीरिक परेशानियां जो हैं उनसे हम बच नहीं सकते। लेकिन

उसमें यही है कि हम हर दशा में, हर दिशा में जीना सीखें और हर तरह के माहौल में आगे बढ़ना सीखें। वास्तविक आनंद तो वही है जिसमें हम दूसरों के दुख कम करने के लिए कोशिश करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, ताकि अंत में हमें ये ग्लानि ना हो कि हम इस जीवन में आकर अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए और दूसरों के लिए भी। तो अपने लिए तो करें ही, दूसरों के लिए भी कुछ करना ज़रूर सीखें, कुछ ज़रूर कोशिश करें। और अब इन सब शब्दों, बातों, गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यहीं समेटने की। हमेशा जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ और अपना ख्याल रखिए, ख्याल रखिए उनका भी जो आपके अपने हैं।

आप सुन रहे थे दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही क्षणों बाद आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनने के लिए। पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से

0: अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार

0: कलिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध, जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
7: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
6: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
7: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
6: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College Playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from BJP and one each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
8: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
6: Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata, in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. We have more from a correspondent.
9: After more than 10 hours of interrogation, he is the first former minister to be arrested since the BJP government took charge in Bengal. ED officials say the alleged irregularities took place between 2014 and 2016. According to ED sources, across 17 municipalities, about 1,000 employees were recruited unlawfully. In the recent assembly poll, Bose lost to BJP by over 37,000 votes. According to Enforcement Directorate, the arrest was made under provisions of the Prevention of Money Laundering Act. Investigators have alleged that Bose recommended appointments of several candidates in the South Domdom municipality in exchange for financial benefits. The agency has also reported suspicious financial transactions during the course of the investigation. Sandeep Andashgupta, Akashvani News, Kolkata.
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. The visit will further deepen India's partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties, in light of the recently concluded India-EU FTA. We have more from a correspondent.
10: On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Then the Prime Minister will reach Netherlands on Friday and call on King William Alexander and Queen Maxima. He will also hold talks with Prime Minister Rob Jetten. For the third leg of the visit, Mr. Modi will travel to Gothenburg, Sweden on Sunday and hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. As part of the final leg of his visit, the Prime Minister will undertake an official visit to Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the Italian President Sergio Mattarella and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
6: US President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support, massive life support, he added.
11: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, they said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
6: Trump received the Iranian proposal on Sunday amid hopes that it could lead to a breakthrough to end the war with Iran that began on February 28th, blocking the key sea route for global oil supplies, leading to fuel shortages in several countries. Our West Asia correspondent has filed this report.
12: Iran's demands focused heavily on wartime and economic conditions rather than immediate nuclear concessions, a framing that Washington appears unwilling to accept at this stage. The gap between the two sides' position remain wide, with mediators struggling to find common ground as battlefield pressures and economic stress continue to mount across West Asia. Meanwhile, in the United Arab Emirates, the government has moved to formalize its response to attacks on national infrastructure. Authorities have established a national committee tasked with documenting damage from more than 2,800 drones and missiles that have struck the Emirati territory. The UAE is now pursuing international legal accountability and seeking reparations for strikes in its landmark and energy facilities. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
6: In Bangladesh, a three-member inquiry committee has been constituted to probe the reason behind the national cricket team's withdrawal from the ICC Men's T20 World Cup in India. According to an official government order dated May 10th, former Additional Secretary Dr. A.K.M. Oli-Ullah will head the panel, which also includes former Bangladesh captain and current chief selector Habibul Bashar and Supreme Court lawyer Faisal Dastagir. The committee has been asked to submit its findings within 15 working days. We have more from a correspondent.
4: Bangladesh withdrew from the T20 World Cup, jointly hosted by India and Sri Lanka, from February 7 to March 8 this year after the International Cricket Council, ICC, refused a request to shift Bangladesh matches from India to Sri Lanka over security concerns. The controversy emerged after the Board of Control for Cricket in India, BCCI, reportedly dropped Bangladesh pacer Mustafizur Rahman from the IPL following threats from extremist group. The then Bangladesh Cricket Board, BCB, led by Aminul Islam, expressed concern over the safety of players, officials and journalists travelling to India for the tournament. After the ICC stated that security arrangements were adequate, the interim government subsequently directed the BCB to withdraw from the tournament, a decision that drew sharp criticism from former cricketers and sports analysts. Nawalsang Parmar, Akashwani News, Dhaka.
6: In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharmashala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. Skipper Akshar Patel was the highest scorer with 56 runs. David Miller made 51 runs off 28 balls. For Punjab Kings, Arshdeep Singh and Yash Thakur took 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. Put into bat, Punjab Kings scored 210 for 5 in the stipulated 20 overs. Shreyas Iyer was the top scorer with 59 runs, while Priyansh Arya made 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc and Madhav Tiwari scalped 2 wickets each. Madhav Tiwari was adjudged player of the match. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall of Assam, Meghalaya, sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. Thunderstorms and lightning are likely to prevail over Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha, coastal Andhra Pradesh, Karnataka and the northeastern states today. The IMD has issued an orange alert for rain in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for the next 36 hours, while a yellow alert has been issued for the remaining districts. There is possibility of hailstorms and gusty winds in various parts of the state during this period. And now for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
13: Thank you, Abhishek. The Somnath Amrit Mahotsav is at the sacred Somnath Temple in Gir Somnath, Gujarat, finds prominent mention in most of the dailies this morning. The statesman, quoting Prime Minister Narendra Modi, says, Somnath Temple stands as beacon of unwavering faith, while the pioneer quotes him as saying, no power can bend India. Prime Minister Modi salutes scientists on National Technology Day, highlights push for self-reliant India, reports the statesman. Second day, Prime Minister makes austerity push, invokes COVID-era habits, leads the Indian Express. The Pioneer, in its editorial piece, says rising crime against senior citizens. The paper elaborates that as India moves steadily towards becoming an aging nation, ensuring safety, dignity and emotional security for senior citizens must become a national priority. India, at present, is a young nation, but it is aging rapidly. By 2050, the country will have a significant elderly population. As the country progresses and new technologies emerge, they also have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. Suvendu government begins to implement key pledges, notice the Asian Age. New Delhi, all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum, called the Beatles at 3 Savile Row, is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
14: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: Akashwani CP.
16: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र पर आप और हम एक बार फिर हैं साथ साथ आकाशवाणी रोहतक के कार्यक्रम आप डीटीएच और आकाशवाणी के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ोन एआईआर पर भी सुन रहे हैं। प्रातः के 8:30 हो चले हैं। समय है कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज कलाकार हैं विक्रम सिंह फोगाट और उनके साथी।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: विक्रम सिंह फोगाट और साथियों की गाई ये है लोक संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: जाना नौटंकी

और लीजिए सुनिए कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज हमारे कलाकार थे विक्रम सिंह फोगाट और उनके साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आगाज कर रहे हैं ABCD2 फिल्म के इस गीत के साथ। सम्मिलित आवाजों में गीत है जिसे लिखा है मयूर पुरी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: और आइए अब सुने आदि पुरुष फिल्म का गीत, आवाज सुखविंदर सिंह की है, गीत मनोज मुंतशिर का और संगीत अजय अतुल का।

और लीजिए अब सुनिए फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत, आवाज़ें कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान और साथियों की, शब्द रचना समीर की, संगीत हिमेश रेशमिया का।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत हमने चुना है फिल्म हम तुम से, प्रसून जोशी का लिखा हुआ, जतिन ललित का संगीत है और आवाजें हैं अलका याग्निक और शान की।

आप सुन रहे थे छोटे मियाँ बड़े मियाँ फिल्म का गीत, आवाजें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी, गीत इरशाद कामिल का और संगीत विशाल मिश्रा का।

आप सुन रहे थे सिटी लाइट्स फिल्म का ये शीर्षक गीत। आवाज़ें उषा उत्थुप और उस्ताद राशिद खां की थी। रश्मि सिंह ने इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया था जीत गांगुली ने। और लीजिए अब सुनिए, समीर टंडन के संगीत निर्देशन में संदीप नाथ का लिखा ये गीत, कैलाश खेर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है कॉरपोरेट।

और ये है मैं हूं ना फिल्म का गीत, आवाजें सोनू निगम, आफताब साबरी और हाशिम की, गीत रचना जावेद अख्तर की और संगीत अनु मलिक का।

0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के इसी गीत के साथ संपन्न होता है फिल्म संगीत कार्यक्रम। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में

0: Titans will take on Sunrisers Hyderabad at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad today. The match will start at 7:30 p.m. Indian time. Earlier, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 10:10 और 12 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी है। मीडियम वेव 262.47 मीटर पर दिन में 12:30 पर आपकी सेवा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज ओने आईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। हमारे दूसरी सफा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए।

0: डंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओ सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए।

0: की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं,
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो। अच्छा। देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?

0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
1: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
1: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
1: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
2: जी।
1: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
1: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
0: जी।
1: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
1: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी,
1: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
1: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
1: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
1: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
1: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
1: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
1: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
1: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
1: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
6: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
4: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ

0: शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौं जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव, सहायक नर्स मिडवाइव और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आदमी और इंसान फिल्म का गीत आपने सुना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ें थी। रवि का संगीत गीत था साहिर लुथैनवी का। ससुराल फिल्म का गीत अब आइए सुनते हैं। शैलेंद्र का रचा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आप सुनेंगे।

ससुराल फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना। शैलेंद्र के बोल थे और संगीत था शंकर जयकिशन का। अब आइए हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनते हैं। साहिर लुधियानवी ने इसे रचा है, संगीतबद्ध किया है रवि ने।

ये था महेंद्र कपूर का गाया हमराज फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के बोल थे, संगीत था रवि का। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म प्रेम पर्वत से, गाया है लता मंगेशकर ने, जानिसार अख्तर के बोल हैं, संगीत है जयदेव का।

प्रेम पर्वत फिल्म से ये गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ सुना। जानिसार अख्तर के बोल थे, संगीत था जयदेव का। अगला गीत आइए सुनते हैं, आशा भोसले का गाया प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म से। SH बिहारी के बोल हैं, OP नैयर का संगीत।

प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गीत आपने आशा भोसले की आवाज़ में सुना। SH बिहारी के बोल थे, संगीत था OP नैय्यर का। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।

यह था सावन की घटा फिल्म का गीत, आशा भोसले ने गाया था। लता मंगेशकर का गाया गौरी फिल्म का गीत अब आइए सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है रवि ने।

गौरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में था। अगला गीत सुनते हैं दोराहा फिल्म से आशा भोसले का गाया हुआ। इंदिवर के बोल हैं, संगीत है सपन जगमोहन का।

दोराहा फिल्म का गीत आशु भोसले की आवाज़ में गाया हुआ हमने और आपने सुना। इंदिवर के बोल थे, संगीत था सपन जगमोहन का। फिल्मी गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। लता मंगेशकर का गाया बुनियाद फिल्म का गीत अब आइए सुनते हैं। आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत बत किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बुनियाद फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में हमने सुना। अगला गीत इंसान और इंसान फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त ने गाया है। ताजदार ताज का गीत है, संगीत है ओपी नैयर का।

इंसान और इंसान फिल्म का ये गीत था गीता दत्त की आवाज़ में। ताजदार ताज का गीत और संगीत ओपी नैयर का था। आई मिलन की बेला।

ये था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया आई मिलन की बेला फिल्म का गीत। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आपको आन मिलो सजना फिल्म से सुना रहे हैं। आशा भोसले ने गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत बद किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: a key military facility to safeguard its aviation and military assets from possible American strikes during the conflict. Reacting to this, Republican Senator Lindsey Graham called for a complete re-evaluation of Pakistan's role as a mediator to end the U.S.-Iran war that broke out on the 28th of February and has been put on pause since the 8th of April. British Prime Minister Keir Starmer is facing mounting pressure from within his own Labour Party. More than 60 Labour MPs are reportedly urging him to set a timetable for stepping down. The demand follows the party's poor performance in recent local elections across England and Wales. According to media reports, several Labour lawmakers have privately and publicly called for a change in leadership amid fears that Prime Minister Starmer's leadership could hurt the party's prospects ahead of the next general election. Responding to the calls to quit, the UK Prime Minister pledged that he would prove his doubters wrong. Mr. Starmer said this while giving a speech in London. Back home, benchmark domestic equity indices declined around 1.4% in the afternoon session today. The Sensex plunged 1,048 points to 74,967, while the Nifty shed 305 points to 23,511 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also declined. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heat wave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thunder squall with wind speed reaching up to 60 kilometers per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2000

0: 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे।

0: करेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भैया ने आनंद भाई के राम राम। और फिलहाल की अगर बात करी जाए तो भाई अपना पूरा लगभग चौपाल के बार देखें तो आज धूप है, लेकिन कुछ जगह पे अपना के थोड़े कुरुक्षेत्र करनाल इस साइड का जो अपना मौसम है भाई, हल्की फुल्की बादल हुआई तेज हवा गर्ज चमक के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की आकार भी हैं। तो जो भी अपनी भाई फसल बाड़ी खास तौर पे जो खड़ी हैं, क्योंकि तो ये मान के चल रहे हैं कि जोड़ो धान वाला एरिया है, तराई वाला एरिया है, वहाँ पे भाई कितने भाई अपनी हरी खाद का प्रयोग भी कर रहे हैं, कितने भाई अपना लेजर लेवलर घोड़ी का काम भी चल रहा है खाली खेतों में। बहुत सी जगह ये देखे हैं कि गहरी जुताई है, वह भी अपना हिसाब से भाई ठीक हो है, क्योंकि गर्मी का टाइम में अपने ज़मीन के लू लग गए हैं, मोटे डले ढेले गहरा बान जब हम कर दिए हैं तो इसका भी काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि अपने ज़मीन में जो सूत्रकर्मी हैं नीमाटोड जिस नाम कह दिए हैं उसका काफ़ी हद ही ख़त्म हो गया है। और फिर जो अपना न्यू देखे हैं कि जो खरपतवार के बीज हैं वह भी काफ़ी अति सूख गए हैं, क्योंकि जब गर्मी तापमान पड़ा है और धरती का टेम्परेचर इतना हो गया है कि उसमें जो अवांछित खरपतवार के बीज हैं काफ़ी अति वह भी ख़त्म हो गए हैं। तो भाई जड़ा हमने देखे हैं कि हमने जड़ा हरी खाद नहीं लेनी है, उड़े भाई अपना गहरी जुताई कर वन गराम, और जड़ा भाई पर्याप्त पानी वो है उड़े भाई हरी खाद में अपने चाहे हम उसमें ढेचा लगा सके हैं कि तो लोबिया लगा सके हैं, बहुत से भाई गवार भी ले लिए हैं। तो ये अलग अलग का अनु देखे हैं कि हरी खाद है वह भी बहुत सा काम कर रहा है, क्योंकि आजकल जो पर्याप्त खाद हो यार दी भाई पहले पशुधन हो यार दा अपना पशुधन भी इतना हो यार दा कि भाई बनी मचरकिया करदा खुलया करदा, आज वह बहुत से बात नहीं रही हैं, खुट्टा थे पशु सीमित हो गया है अपना। कुछ एक ऐसे काम है जिनका सारे भाई बनी लागे है उड़े इबे किसान भाई खोल ले हैं, लेकिन पूरी जो पर्याप्त खाद की अगर बात आओ है कि भाई देसी खाद होया कर दी वह आज हमारे पास नहीं है। तो इस तरह यो आओ है कि भाई अपनी जो हरी खाद है उसका प्रयोग किया जावे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ जहर मुक्त खेती है उसकी तरफ लौटा जावे, क्योंकि आजकल जो खाना दाना है अपना खान पान है उसके में इतना लगभग पेस्टिसाइड की वजह से यूरिया खाद डीएपी और दवाइयाँ की वजह से खाना जहर हो रहा है, अपनी फसल है वह भी जहरीली हो रही है, और इसके साथ साथ आजकल जो पशुधन है क्योंकि उसमें भी ये जाओ है भाई वो भी अपना हरा चारा खाओ है, खेत में हम उगाओ हैं नाजपात दलिया उसने भी पड़ा है पशुआ नहीं पड़ा है भाई। तो आजकल क्यों है कि देखने में ये आ रहा है कि जो पशुधन है वो भाई कितने तो क्या बनकौन ठहरदा कि थन जान की कमी हो गया है, कि टाइम पर नहीं बहनता, कि आधा ब्याह हो गया है, कि भाई नया दूध नहीं रड़दा, तो बहुत सी समस्या ये हैं कि वह समस्या सबसे ज़्यादा ये देखने में आओगे भाई पशुधन में भी काफ़ी समस्या आ रही हैं। आज बिल्कुल कम डांगरा तो भी काम चलाना पड़ रहा है, बहुत से भाई का रोजगार कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ की जो है भाई बारीकी हम समझें, बारीकियाँ हम देखें जब जाके कोई काम धाम हम शुरू करें। और आज बात भाई थोड़ा अपना ये देखे हैं चाहे वो पशुधन के चाल रही थी तो मक्का है अपना लोबिया है बेचारे के लिए कास्ट भी करी जाए इसकी, तो यूँ देखें हम चाहे मक्का है लोबिया है चारे के लिए भाई इसमें कास्त हम उगावे हैं तो टाइम से हम करें, क्योंकि आगे चाल की बहुत सा एरिया मैंने देखे हैं भाई जड़ पर्याप्त पानी है धरती है ज़मीन है नहर का सारा अलगी तो आई आगे चल के धान भी लागेंगे उस ज़मीन में और सारे पानी भी खड़ा होगा, तो बहुत सा टाइम के अनुसार हमने थोड़ा जल्दी वाली ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਬੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਾਜਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮ ਆ ਜਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਲੇ ਸਕੇ ਹਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਹਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਬੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਚਾਰਾ ਹਮ ਲਿਓ ਹੈ ਤੋ ਸਭਸੇ ਬੜੀਆ ਇਸਮੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਚਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕੇ ਲੀਏ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਚਾਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਟ ਬਾਖਰ ਬੰਟਾ ਜੋ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਲਾ ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਡਾਲਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਕਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਡਾਲਕਾ ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਡਾਲਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਬ ਅਨਾਜ ਧਰੇ ਹੈ ਚਾਟ ਬਾਖਰ ਬੰਟਾ ਹਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਮੇ ਚਾਹੇ ਹਮ ਨਮਕ ਡਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਬਈ ਉਸਨੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੀ ਜੋ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਚਾਰਾ ਕਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੋਬੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੋ ਬਾਤ ਕੁਛ ਡਟਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿਨ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੈਣੀ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਕੀ ਗਾਈ ਹੋਈ।
2: ਟੋਟੀ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਕਾਟ ਲਈ।

या तो सुनी बहन रागनी, एक रागनी की और सुनवाऊंगे। लेकिन अपना जो खेती बाड़ी में भाई जिक्र चल रहा था, क्योंकि चाहे हम वो मकचरी लगाऊँ हैं, मक्का लगाऊँ हैं, लोबिया लगाऊँ हैं, सारे मिश्रित सारे अगर हम लगा लिया हैं तो सबसे बढ़िया भाई अपना जो पशुधन है उस खातर भी पोषण आहार बढ़िया होगा। और जो अपनी ज़मीन का फेरबदल है भाई, उसमें भी देखे हैं कि तरह तरह के साल दर साल हम थोड़ा हाल लगता अटकी खेती बाड़ी हम करी जावा हाँ, तो ज़मीन भी अपनी ठीक रहो है। इसमें जड़ते ही मकचरी की बात करी जाए तो भाई बढ़िया किस्म आगे अगर बात करा हाँ इसमें, तो भाई यूँ देखे हैं कि जो बहुत ही स्वादिष्ट और उपयोगी चारे वाली किस्म है उन्नत मकचरी का नाम तय है। जो उन्नत मकचरी है भाई, इसमें किसी तरह की बीमारी या फिर कीड़ा ना लगता। और सिंचित और नम आदर जो खास तौर पर पहाड़ी वाले इलाक़े में इसने बढ़िया पूर्वक उगाया भी जा सके है। और ये देखे हैं कि भाई यह एक अधिक पत्तेदार किस्म है और 200 क्विंटल प्रति एकड़ का हिसाब से हमने हरा चारा है इससे मिल भी जाओ है। और चारा के लिए भाई लगभग 110 से लेकर 112 दिन में यह सही ढंग से तैयार भी हो जाए है। मिट्टी की खेत की अगर बात करी जाए तो भाई मकचरी खातर हमने रेतीली जो दोमट माटी है बाहरी मिट्टी अच्छी रहो है इसमें। और खेत ना हम देसी हल से दो तले की चार बार जोत की तैयारी इसमें हम कर सकें हैं। बीज की बिजाई भाई हमने इसकी 25 जून से लेकर 14 जुलाई तई बिजाई करते हैं, ज़्यादा पैदावार इसमें मिला हमने। और मकचरी नाम केरा भी दिया, फिर कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रख की इसकी जो है बिजाई कर सकें हैं। 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें हमने बीज ठीक रहा है। और कतारा हम बोणते भाई इस पर भारी जो सुहागा है वो हमने लगा देना चाहिए ताकि पूरा विधि तय बिजाई इसमें ठीक रहा है। खाद की अगर बात करी जाए तो भाई प्रति एकड़ हमने लगभग 10 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन वाली खाद है

यानी कि 87 किलो यूरिया इसमें हम लेनी है 46% वाली, और आवश्यकता पड़ने पर 22-1 किलोग्राम इसमें हम नाइट्रोजन 43.5% किलोग्राम यूरिया, और बिजाई का समय भाई इतनी ही बिजाई के लगभग 35 से 40 दिन के बाद में हमने देनी है। रेतीली ज़मीन फास्फोरस की कमी वाली ज़मीन में 6 किलोग्राम फास्फोरस 40 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और प्रति 1 किलो के हिसाब से इसमें हमने बिजाई के समय दे देनी है। निराई गुडाई की बात करी जाए तो भाई फसल उगाने के अलग 15-20 दिन बाद में अच्छी निराई गुडाई करनी है हमने, फसल ने बढ़िया रहो है कि दिक्कत ना आवे। और भाई सिंचाई का तो यो है कि भी वर्षा के अनुसार एक या फिर दो सिंचाई हमने कर देनी है। मानसून भाई लो होगी तो अपने भाई बूंदाबांदी ठीक हो जाए तो काम चल जाए। फिर बात है अपनी जो लोबिया है, क्योंकि लोबिया की खेती भाई सिंचित इलाके के लिए बढ़िया मानी गई है, और इसने ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इसके साथ मिला की बीज ताकि हरे चारे की जो पैदावार है और बगैर फली के चारे में पौष्टिक तत्व तो बढ़ जाए। इसमें पशुओं में गर्मी में दूध देने की क्षमता बनाए रखने खातर भाई इसने दुधारू जानवरों ने खिलाया जा सके है। किस्म की वैरायटी की बात आओ तो भाई इसमें CS88 का नाम तो है, यह कसम लगभग अपना हरियाणा में चारे की खेती के लिए बढ़िया मानी गई है। यह सिद्धि बढ़ने वाली किस्म है जिसके पत्ते गहरे हरे चौड़े हुए हैं, और यह कसम लगभग रोगन और कीड़ा से मुक्त रहा है। खासकर पीड़ा जो मोज़ेक विषाणु रोग आ जाता है उसके प्रति यह रोग रोधी है। इसकी बिजाई भाई सिंचित और कम सिंचित वाले दोनों जो इलाके हैं उनमें कर सकें हम, और क्षेत्रा में गर्मी और खरीफ में करी जा सके है। यह किस्म 55 से 60 दिन में औसतन 50% फूल आने पर हरे चारे की कटाई के लिए तैयार हो जाए है। और यह फसल बीज के लिए भाई लेनी हो तो हमने बिजाई का बढ़िया टाइम जुलाई ते मध्यम अगस्त और प्रथम सप्ताह तीन है। इसके हरे चारे की पैदावार जो 140 से 150 क्विंटल प्रति 1 किलो का हिसाब था इसमें हमने पैदावार भी मिल जाए है। और मिट्टी खेत की तैयारी की बात करी जाए तो भाई जमीन समतल और अच्छा जल निकास वाली भूमि हो, तड़े पानी नहीं खड़े आता हो, जहाँ पर दिक्कत नहीं आवे उपज लेने के लिए भाई बढ़िया दोमट मिट्टी बढ़िया इसमें मानी गई है। और जिस अच्छी तरह तैयार करने के लिए भाई 2 बारिश में गहरी जुताई हम करें, फिर बढ़िया ज़मीन ने साफ सुथरी संभाल के हम इसमें बिजाई करें। बिजाई का टाइम की बात करें तो भाई लोबिया की बिजाई मार्च से लेकर जुलाई का मध्यम तक हम कर लें, लेकिन हरे चारे की सबसे अधिक पैदावार के लिए भाई इसने सिंचित इलाके में मई का पहला फेरे सप्ताह जो आपने इसमें बोया उसके इसमें हमने वर्षा और पर निर्भर इलाके के लिए बरसात शुरू होने बीज हमने देना चाहिए। बीज की बिजाई का तरीके की बात करी जाए तो भाई इसमें 16 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति 1 किलो के हिसाब से इसमें बीज डालें। कतार तक कतार का 30 सेंटीमीटर का फासला रखना है। ड्रिल द्वारा बिजाई हम कर दें। और खाद का तो भाई वो ये है कि हमारे पास अगर देसी खाद हो जाए मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहे इसमें, नहीं तो फिर भाई अपनी 10 किलोग्राम नाइट्रोजन है भाई, 22 किलोग्राम यूरिया है और 25 किलोग्राम फास्फोरस, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, या पूरी जो डोज है अपनी 1 किलो की हो जाए। 1 एकड़ बिजाई के लिए भाई कतार में ड्रिल कर देनी चाहिए। और न्यू देखे हैं कि दाल वाली फसल होने के कारण भाई नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती। फिर यो है कि भाई अपनी निराई गुडाई का भाई अच्छा जर्मिनेशन हो जाए, बढ़िया पैदावार हो जाए तो कसोले तो भाई हम निराई गुडाई कर दें। मानसून का बरसात का टाइम में थोड़ा बहुत फर्क रह जाए, नहीं तो भाई गर्मी में हमने पानी भी पुगानी पड़े हैं, कीड़ा तैयार करती हैं बचानी पड़ेगी हमने थोड़ा। हाँ यो ध्यान रखें कि जो भी हम बिजाई करें बढ़िया किस्म लेवें, बढ़िया ठीक ढंग से हम खेत में संभारें, फिर जाके पैदावार लेवें। तो चलो भाई गीत रागनी भैया नेक्स्ट टाइम फिर सुनवा दें हैं, कलाकार फिर रहे हैं सुरेश कुमार नैनिया और उनके साथी।

0: तो यह सुनी बयान है रागनी सुरेश कुमार रोमैनिया की गाई हुई थी। लेकिन अपना जो खेती बाड़ी का काम दाम है भाई, ये देखे हैं चाहे वह गचाल की अपने दाना की तैयारी करनी है, फिलहाल अपना भाई ये देखे हैं कि जड़े खाली खेत हो तो भाई गहरी जुताई हम कर दें, अपना जो डोल इनाक की जमीन है भाई उसने एक सारा हम बड़े सर कर ली, ताकि आगे जड़े धान वाला इलाका है भाई एकदम से पानी की दिक्कत ना आ पाओ इसमें, और ठीक ढंग से इसमें पानी लाग जाए, एक सारा पानी खड़िया हो जाए, पानी की बचत हो जाए और खेती इसी करा हम जिसना हम खर्चा कम लागे है, आमदनी ठीक हो जाए, थोड़ा फेर बदल के हमने करनी चाहिए। तो भाई अभी देख ले हैं घड़ी का नहीं, खेत खलिहान कार्यक्रम का समय यहीं पर हो रहा समाप्त, चल लेंगे सारे भाण भैया ने, राम राम।
1: आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर पर, यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर न्यूज़ जोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 बज चुके हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को अंजलि का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर लेते हैं आज मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस के बारे में। पौधे धरती पर जीवन का आधार है। जो हम भोजन खाते हैं उसका 80% हिस्सा और जो हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं उसका 98% हिस्सा पौधों से ही आता है। पौधों के इस महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कई देशों के सहयोग से की गई। पहला आधिकारिक दिवस 12 मई 2022 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना है कि पौधों की रक्षा करना मानवीय स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए आवश्यक है। आज जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण पौधों का स्वास्थ्य खतरे में है। वैश्विक व्यापार और यात्रा के कारण कीट और बीमारियां एक देश से दूसरे देश आसानी से पहुंच जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार हर साल कीटों और बीमारियों की वजह से लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती हैं, जो करोड़ों की आर्थिक हानि का कारण बनते हैं और भूखमरी का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है कि यदि पौधे सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। पौधों का स्वास्थ्य बिगड़ने का सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। इसी के साथ साथियों, जैसा कि आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन कार्यक्रम होता है फिल्म संगीत, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हीरो नंबर 1 से, जिसे गाया है कुमार सानू ने, गीतकार हैं समीर, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म हीरो नंबर वन से, जिसे गाया था कुमार सानू ने। चलिए साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान में अंकित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मुख्य रूप से अनुच्छेद 29 और 30 को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित होती है, जबकि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति प्रदान होती है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने की अनुमति होती है। अनुच्छेद 29 यह गारंटी देता है कि नागरिकों को भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। भारत एक बहुत विशाल देश है और विविधताओं से भरा है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए इस बात पर

साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, जिसे गाया था उदित नारायण ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था जतिन ललित ने। इसी के साथ साथियों, समय हो चुका है कार्यक्रम को यहीं सम

0: अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR रोहतक और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक उपहार का।

0: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सागर। आज हमारे साथ हैं अमूल्या मैम। अमूल्या मैम हैं बेंगलोर की रहने वाली और इन्होंने अपना लिवर डोनेट किया था। हाय मैम, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगा एक पूरी जर्नी के बारे में, थोड़ा सा हमें लेकर चलिए, बचपन से लेकर अपनी आपकी लाइफ कैसी रही।
2: मैं तो पूरे इंडिया में मतलब रह चुकी हूँ। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने पापा के बैंक का जॉब था, तो ट्रांसफर्स के कारण हम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, काफी अलग अलग प्रदेशों में रह चुके हैं। फिर आंध्रा में हम सेटल हुए, वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, फिर मैंने अपना MBA किया। तो ये मेरा प्रोफेशनल जर्नी रहा है अभी तक का।
1: तो सीधा मैम, मैं पॉइंट पर आना चाहूंगा कि आपने अपना लिवर डोनेट किया, किसको आपने डोनेट किया, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, उनको क्या प्रॉब्लम हुई।
2: मैंने अपना लिवर डोनेट किया अपनी तब 7 साल वाली लड़की को, जिसका नाम मायरा है। तो ये लिवर डोनेशन मायरा के लिए था। हाँ, ये मेरी बेटी है। जैसे हमारे समक्ष आया, काफी मतलब सरप्राइजिंग और आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल वैसे काफी सीधा साधा लाइफस्टाइल है। बट जब सडनली हम लोगों ने जॉन्डिस का थोड़ा सा हमें मतलब महसूस हुआ कि आंखें थोड़ी पीली दिख रही है, तो फिर हम ऐसे डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गए थे। तो फिर तब जाकर मतलब काफी कुछ बदला अगले 7 दिनों में, जिसके लास्ट चरण में लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा।
1: थोड़ा सा मायरा के बारे में हमें बताइए मैम, कि मायरा किस तरह की बच्ची है और क्या उसका लाइफस्टाइल हुआ करता था।
2: काफी एक्टिव है मायरा वैसे। तब तो वो बैडमिंटन खेला करती थी, डांस क्लासेस जाती है, कीबोर्ड सीखती है और काफी स्कूल में अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी।
1: अमूल्य मैम, तो क्या कोई भी ऐसी चीज है मायरा की लाइफ की जो आपको ऐसा लगता हो कि ओके, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे।
2: अभी जो हमारा केस था वो काफी मतलब जेनेटिकली मतलब जेनेटिक कंडीशंस में आता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम अवॉइड कर सकते थे, तो इसका मतलब एक ही उपाय होगा कि हम काफी स्क्रीनिंग और मेडिकल वैल्यूएशंस पे ज्यादा फोकस करें। जनरली बच्चों के चक्कर में हम लोग इतना मतलब, जैसे अभी हम एडल्ट्स में एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, हम जनरली अपने बच्चों का ये सब नहीं करवाते। तो ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जहां हम शायद आज नहीं सोच रहे हैं, बट जैसे अगर आपके बच्चे हैं, आपके घर में बड़े हो रहे हैं, तो एनुअल रूटीन होना चाहिए कि आप एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि ऐसी कोई चीज है जो प्रॉबेबली हम अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, या जिसका हमने टेस्ट नहीं करवाया है, या कोई ऐसा टेस्ट है वैक्सीनेशन लेने के बाद जो अब के जमाने में करवाना चाहिए, जो हमने पहले नहीं करवाया था।
1: थोड़ा सा हमें बताइए वो फेज कैसा था और क्या थॉट्स हुआ करते थे आपके, मायरा के सिम्टम्स क्या थे।
2: काफी पेनफुल और टर्मोइल वाली कंडीशन थी सागर जी। अभी मतलब आप जो कह रहे सही है, बट ये काफी इम्पोर्टेंट है कि दर्शकों तक ये समझ पहुंचे, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ आपके आसपास में किसी की दशा ऐसी हो या कभी ना चाहते हुए आपके साथ घटे, तो आप इसको बेटर फेस कर पाओ। तो हम लोग, जैसे जो हमारा जर्नी था वो ऑलमोस्ट 40 दिन का था। तो जिस दिन

0: मायरा को एडमिट किया था फॉर रेगुलर जॉन्डिस चेकअप, वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। तो इसके बाद 2-3 दिन तक मतलब जॉन्डिस की ट्रीटमेंट की तरफ से ही सब कुछ चल रहा था, बट हमको भी काफ़ी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी डॉक्टर से कि ये हो क्या रहा है। मतलब ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था कि मतलब क्या, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। तो आफ्टर 2-3 डेज तब जाकर हमारी लिवर ट्रांसप्लांट टीम जो थी हॉस्पिटल की, तब जाके हमसे मिली और उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे जो लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो मायरा का लिवर नहीं कर पा रहा है। तो देर इज एन एक्यूट लिवर फेलियर, ये टर्मिनोलॉजी थी। तो एक्यूट लिवर फेलियर होने के कारण मतलब वो जो भी खा रही है पी रही है वो एकदम से फ्लश आउट हो जाता था। तो इसीलिए बाहर से काफी सप्लीमेंट्स देने पड़ रहे थे इन टर्म्स ऑफ IV। बट एकदम 4 डे के बाद से जो हमने देखा उसकी काफी कंडीशन उसकी खराब होने लगी थी। पूरा उसका बॉडी जैसे एकदम पीला पड़ गया था, आइस काफी पीली हो गई थी, काफी हाई फीवर हो गया था। तब जाके हमको जब लिवर ट्रांसप्लांट टीम मिली तो उन्होंने बताया कि ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन। एंड जब हमने पहली बार बात सुनी तो हमारे मतलब हमें रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार हमने सुना था, कभी हमने फैमिली में किसी का ऐसा कोई केस ना देखा था ना सुना था आसपास में भी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब उसका पूरा लिवर रिप्लेस किया जाएगा एंड हम बाहर से एक फॉरेन लिवर लेकर आएंगे एंड उसको बॉडी में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी डोनर है उनके पैरामीटर्स मैच करे, वो जो लिवर हम लेकर आएंगे वो लिवर हेल्दी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सो दैट वी आर एबल टू गिव हर अ बेटर एंड अ न्यू लिवर। मतलब ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप जब ट्रांसप्लांट वगैरह की बात करते हो तो इंश्योरेंस वगैरह भी एकदम हैंडी नहीं आता, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक फाइनेंशियल सरप्लस भी हो। तो तभी हमने 2-3 और ओपिनियंस भी लिए। बहुत कम विंडो था हमारे पास, बट फिर भी मेरी छोटी बहन भी डॉक्टर है तो उसने भी अपने हॉस्पिटल में बात की, तब जाके थोड़े डॉक्टर रिकमेंडेशंस भी आए। बट लकीली उनका जो रिकमेंडेशन था जो हमारे डॉक्टर थे वो एक ही थे, तो काफी मतलब हमें वहां से कॉन्फिडेंस मिला। तो जैसे मेरी बहन थी तो वो काफी मतलब बात कर रही थी मेडिकेशंस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ बदला जा सकता है, तो वो काफी हमारे पास एक्सटेंसिव सपोर्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जब जाके हमने मतलब डोनर टेस्ट के लिए, जनरली पेरेंट्स आर द फर्स्ट चॉइस, तो डॉक्टर्स पेरेंट्स को फर्स्ट ऑप्शन देते हैं टू बी द डोनर। एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट मेरा वाज अ रेलेवेंट प्रोफाइल फॉर हर डोनर। तो आइडियली वी वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं करूंगी। जब हमें पता चला था कि डोनर बनना है तो माय हस्बैंड ने बोला था कि कब मैं जाता हूँ, सो दैट मतलब मायरा के साथ आप रहोगे पोस्ट सर्जरी टू रिकवर एंड हेल्प हर रिकवर सूनर। तो बट उनका मतलब ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, तो फिर इट हैपेंड टू बी मी। तो ये थोड़ा हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, तो ये एक अलग जर्नी थी टू से कि आगे जाके अब क्या होगा। बट फिर मैंने अपने टेस्ट दिए पूरे 24 घंटे में, क्योंकि डोनर्स का भी एक एक्सटेंसिव टेस्ट प्रोफाइल होता है। तो जब ओनली वो टेस्ट प्रोफाइल क्रॉस होता है और सब रिजल्ट ठीक आते हैं, तब जाके आपको फिट डोनर माना जाता है फॉर द सर्जरी। तो ये ऑलमोस्ट 5 डे की बात थी जब मेरे सारे रिजल्ट्स आए और मुझे फिट कहा गया था, वी वर ओके टू प्रोसीड विद द सर्जरी। तो तब जाके मैंने मायरा से बात की थी, तब उसको मैंने बताया था कि बेटा इस छोटा सा एक आपको इनसे मतलब छोटा सा कट होगा, वहाँ पे आपका जो लिवर काम नहीं कर रहा है उसको हटा के मम्मा का आपको लिवर देंगे, तो यू विल बी फाइन एंड आई विल बी फाइन। तो ऐसे करके बात हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे सर्जरी चली, जब मेरा लिवर निकाल के उसको फिर मायरा में ट्रांसप्लांट किया गया, उसकी सर्जरी कुछ 12 घंटे चली, देन दैट वॉज द एंड ऑफ the process, but वहाँ तक बात खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद post recovery is another challenging phase. तो somewhere ये help हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि what she is going through, तो मैं उसको guide भी कर पा रही थी। तो उसको पता था कि मम्मी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, तो फिर वो भी काफी confident थी, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा मतलब strong थी, तो recovery में भी हमें उतना ही जल्दी और उसके body का support मिला। 40 दिन लगे, वो 40 दिन hospital में थी, मैं almost 7 दिन के बाद मैं वापस आ गई थी, बट वो 40 दिन तक hospital में थी। तो धीरे धीरे फिर हमने ब्रीथिंग करना सीखा, बॉडी की इलास्टिसिटी हमने बनानी सीखी, हमने फिर वॉक करना सीखा, खाना खाना सीखा, छींकना सीखा। तो ये पूरा हमारा जर्नी रहा। अब जाके हम अपने आप को नॉर्मल महसूस करते हैं, बट ऐसे दिनों में फिर याद आता है कि हम कितने ग्रेटफुल हैं।
1: अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो आपने 2-3 चीजें मेंशन की हैं, खाना खाना सीखा, छींकना सीखा, ये बहुत ज्यादा यू नो माइन्यूट लेवल पर चीजें आ जाती हैं।
0: क्योंकि आपकी जब सर्जरी होती है तो जो बॉडी का मतलब जो खोल के बंद किया जाता है उसके वजह से आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है इन सब छोटी चीजों का, ये काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप जब खाते हो तो हर निवाले के साथ आपका जो इंसिशन है, जो स्टिचेस है, वो सब दर्द करते हैं। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर एंड कम बैक टू नॉर्मल। जब आप ब्रीथ करते हो तो ऐसे आपको लगता है कि आप शायद सिर्फ 10% ऑफ द लंग कैपेसिटी के साथ ब्रीथ कर रहे हो. मतलब हम बात भी जब करते थे तो 3-4 शब्द के आगे हम बोल नहीं पाते थे. हमको ऑलमोस्ट 1 महीना लगा कि हम मतलब नॉर्मल ब्रीथ करके एक सेंटेंस बोल पाए. तो फिर हम जब वॉक करते थे तब भी यही होता था कि ब्रीथिंग कैपेसिटी काफी लिमिटेड हो जाती थी. तो 2-3 स्टेप चलते थे फिर बैठ जाते थे, फिर 2-3 स्टेप चलते थे फिर बैठ जाते थे. मतलब दिस इज ऑल पोस्ट सर्जरी इम्प्लीकेशंस कि आपकी बॉडी काफी वीक हो जाती है, बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती. एंड जस्ट बिकॉज सब कुछ खोल के फिर बंद किया जाता है तो द ऑर्गन्स ऑल्सो टेक अ वाइल टू गेट एडजस्टेड टू द न्यू रूटीन. तो इसीलिए आपका जो प्री सर्जरी बॉडी है उसकी फिटनेस काफी हेल्प करती है टू रिकवर लेटर आफ्टर दिस फेज.
1: आपके जो थॉट्स थे डोनेट करने के पहले और आफ्टर डोनेशन की जो आपकी लाइफ है, क्या कुछ आपने अलग पाया? हाउ डू यू फील अबाउट दिस कॉज नाउ? प्लीज वो थोड़ा सा हमें एलाबोरेट करके बताएं.
0: ड्यूरिंग द सर्जरी तो ऐसे था कि मतलब जो भी बन पाए हम करेंगे टू इंश्योर कि हम मायरा को एक दूसरा जन्म दे सके. और उसका उसकी जो सर्जरी हुई थी वो उसके बर्थडे के दिन ही हुई थी, तो मैं तो उसको दूसरा जन्म ही कहूंगी. मैं तो सबको कहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को 2 बार जन्म दिया है. तो मैं उसमें काफी अपने आप को प्राउड फील करती हूँ और भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. बट तब डॉक्टर्स काफी आपको एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. मैं वो काफी ट्रांसपेरेंटली भी बताऊंगी आपको. तो ऐसे होता है कि आफ्टर ऑर्गन हैज बीन ट्रांसप्लांटेड, रिसिपिएंट के लिए इम्यूनोसप्रेशन स्टार्ट किया जाता है ताकि जो ऑर्गन उनको नया मिला है वो उनकी बॉडी खुद रिजेक्ट ना करे. तो ये ऐसी मेडिकेशन होती है जो आपको हर 12 घंटे पे लेने होती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम की जाती है ताकि आपकी की बॉडी आपके न्यू ऑर्गन से फाइट ना कर पाए. तो जब आप इम्यूनिटी लो करते हो तो उसकी वजह से जो भी मतलब बाकी के वायरस बैक्टीरिया है वो काफी हद तक बॉडी को अटैक करने लगते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है. तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे आप इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाओगे तो वो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको इम्पैक्ट करेगा, तो आपको इम्यूनिटी कम ही रखनी पड़ेगी. बट अगर आप कम रखोगे तो आपके बाकी के इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं. तो इसमें जो पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि आप ऐसे सराउंडिंग्स में रहो जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है. आप बाहर जा रहे हो तो आप मास्क पहन के चलो, आप अपने हैंड्स को हमेशा क्लीन रखो, मल्टीपल टाइम्स वॉश करो, सैनिटाइज करो. अगर आप बच्चे के एज ग्रुप में हो तो आप ऐसा कोई स्कूल ढूंढो जहाँ पे आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके. तो ये सारे जो हमने कोविड के टाइम पे थोड़े प्रिकॉशंस देखे थे ये बिकम अ पार्ट ऑफ आर नॉर्मल लाइफ. तो मतलब काफी लंबा प्रोसेस रहा है, पूरे 12 महीने की जर्नी रही है. बट अभी हम लोग काफी नॉर्मल लाइफ में घुल मिल गए हैं. हमारा डाइट नॉर्मल हो चुका है, हम लोग एज अ फैमिली भी ट्रैवल करते हैं, वो भी काफी क्लासेस करती है. तो मेरा ऑफिस वाइज भी मैंने ऐसे रोल्स लिए हैं जहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ कि अगर मायरा को जरूरत पड़े तो आई एम अराउंड. बट काफी नॉर्मल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ अवर फूड, अवर सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल्स. ये तो मैं सबके लिए कहूंगी कि वन, आप भले लिविंग डोनर हो या ना हो बट प्लीज साइन अप टू बी अ डोनर. आप जब मतलब अगर आप इस दुनिया में रहे ना रहे बट आप कितने काफी लोगों को आप और जिंदगी दे सकते हैं. ये तो मैंने अपने नाना जी के टाइम से देखा है. वो खुद डॉक्टर थे तो उन्होंने मतलब इवन बिफोर ही वाज क्लोज टू हिज डेथ उन्होंने ऑलरेडी साइन अप कर दिया था कि मेरे आंखों को डोनेट किया जाएगा, स्किन को डोनेट किया जाएगा एंड एनी ऑर्गन विच इज इन वर्किंग कंडीशन को डोनेट किया जाए. तो उनकी तो मतलब तभी से इच्छा थी. मैं तो एंकरेज करूंगी सबको कि आप वन एज एन ऑर्गन डोनर अपने आपको रजिस्टर करे कि कभी कोई नीड पड़े तो देयर इज समबडी हु कैन रीच आउट टू यू.
1: दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये शो आपके लिए काफी इंस्पायरिंग रहा होगा. नाउ विद दिस नोट हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे. अमूल्या मैम, इट मींस अ लॉट टू अस, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट.
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में.
3: दोस्तों अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं. अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। शाम की 6 बजते हैं। अब समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
5: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
4: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारत

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जाँच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। आइए आपको दे दी कार्यक्रम रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा में पहले जान लीजिए आज के शेष कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:20 पर, जिसमें डॉक्टर प्रीति से बातचीत का विषय रहेगा कुदरती खेती कितनी लाभदायक। 7:00 ग्रामीण संसार में डॉक्टर परमल चौधरी से बातचीत आप सुन पाएंगे, उच्च रक्तचाप कारण व उपचार। 8:25 कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:25 पर, 7:30 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम।

आप श्रोताओं की खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर आएंगे रात्रि 10:30 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म रहेगी आनंद आश्रम। इस कार्यक्रम का समय होता है रात्रि 9:15।

और श्रोताओं, रात 9:30 पर सुनिएगा हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

आज के शेष कार्यक्रम आपने जाने और अब आपको बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में चर्चा का विषय। यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कल रात 9:30 बजे, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 7:25 पर हमारी सेहत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर प्रदीप काम्बोज से ली गई भेंटवार्ता, हड्डियों के प्रमुख रोग कारण उपचार व बचाव विषय पर।

युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे करियर काउंसलिंग के तहत कल अजय कौशिक से ली गई बातचीत सुनिएगा, टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार विषय पर। NCERT प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे दोपहर 2:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर भेंटवार्ता एक किसान से क्रम में कल के किसान होंगे जयकरण। 7:00 ग्रामीण संसार में बालक मंडली फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होगा।

मनचाही गीत कार्यक्रम में सुनिएगा कल रात 10 बजे, फिल्म संगीत शाम 7:30 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर, और सुबह 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे कपूर चंद। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। 6:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होंगे।

0: तुरल में जो पास प्रतिशत है वह 1,71,270 परीक्षार्थी जो थे उनमें से 1,47,553 विद्यार्थी परीक्षार्थी जो पास हुए हैं और रूरल का पास प्रतिशत 84.98% रहा। इसी प्रकार से अर्बन की बात यदि हम करें, अर्बन में कुल 77,586 परीक्षार्थी अपियर हुए थे जिसमें से 60,065 परीक्षार्थी पास हुए हैं और अर्बन का परीक्षा परिणाम 83.91% रहा है, 9.91% रहा है, यानी जो रूरल का परीक्षा परिणाम है वह अर्बन परीक्षा परिणाम से बेहतर है।
1: उन्होंने कहा कि जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें पुनर्जांच और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों के आम एवं उपचुनावों की मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नगर निकाय चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। प्रत्येक चरण की निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। पंचकुला नगर निगम में मतगणना को लेकर उपमंडल दंडाधिकारी संयम गर्ग ने बताया,
2: पंचकुला नगर निगम इलेक्शंस की काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेयर और वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग साइमल्टेनियसली चलेगी। इसके लिए 20 टेबल का प्रबंध किया गया है जिसमें से 10 टेबल मेयर की काउंटिंग के लिए और 10 टेबल वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं।
1: उन्होंने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही मतगणना स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार पर बल दे रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को ली गई नीट परीक्षा रद्द की। नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मीरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर मीरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका रद्द की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:20 और 13 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइया ने आनंद भाई की राम राम। और फिलहाल देखे हैं कि भाई अपना मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम भाई अपना लगभग कैथल कुरुक्षेत्र करनाल अम्बाला भाई इस तरफ का जो है बादलवाई तेज हवाएं के साथ गरज चमक बूंदाबांदी का बताया गया है। और जड़ ती देखें कि भाई अपने खास तौर पर जड़े खड़ी फसलें हैं क्योंकि जड़े बरानी इलाका है भाई उड़े भैया ने किते बाजरा टेम बाजरे का टेम भी आओ है और कपास का टेम भी है। तो जड़ती संभव उसके भाई ये है कि भाई तेज हवा के साथ थोड़ी ही अपनी जो कपास की फसल है वह भाई थोड़ी बहुत मार मजास का है क्योंकि खूडा तें वह अट जाए और फिर रेतीली जो हवाएं हैं वो तातड़ते हैं भाई वह अपनी कपास जो है फसल वाल लकड़ जाए है फिर इसमें दिक्कत आओ है। और जड़े भरिया इलाका है भाई जमीन खाली है तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई कितने धाना का इलाका भी भैया होगा भाई कितने जमीन बाई का टाइम भी चल रहा है भाई। और जड़े खाली खेत हैं भाई उड़े गहरी जुताई का भी अपना अलग महत्व है कितने हरी खाद का भी अपना अलग महत्व है तो बहुत सी इसमें बात आ जाए हैं। जड़ती बात आओ भाई धाना का इलाके की भारी और स्वस्थ बीज हमने इसका चुनाव करना है लगभग 10 किलोग्राम बीज ना हम 10 लीटर पानी में गोड़ की और 10 लीटर पानी में भाई अपना नमक डाल ले हम उन्हें डुबो दें। और जो पुराना बीज है छणेवड़ा बीज है खाली थोथा बीज है कोई नू दिखे भाई बीमारी का है वो दाना ऊपर आ जाएगा। और ये देखे हैं कि वो दाना ऊपर आ जाए तो फिर उसने बिल्कुल स्वस्थ अपने पौधे बना सका हम क्योंकि अपना 5वां महीना चल रहा है भाई पर्याप्त पानी जिन भाइयों पर देखे हैं कि जड़े धान की बेल्ट है उड़े भाई थोड़े दिन में किसान भाई अपने भाई पनीरी है प्योज जिस नाम कह दे हैं वो बनानी भी शुरू कर देंगे। तो भाई साफ़ सुथरा बीज हमने ले हुए बढ़िया क्वालिटी का ले हुए हैं। और जो आजकल ये देखे हैं कि मंडीकरण के कारण सबसे ज़्यादा भाई दिक्कत है थोड़ी ही बेचने में या है कि किस्म है उनका भाई एक दूसरे का दाना आजकल मिलता जुलता हो है और फिर आगे चल की भाई भाव पर रोड़ माच है या भाई 17-18 था या 18-21 था या 18-85 था तो इस हिसाब से भाई अपना प्रमाणीकरण थोड़ा हा बीज नाम सोच बूझ की जगह तो बढ़िया नू देखें भाई भरोसे की जगह है कोई हरियाणा बीज विकास निगम है उड़ता हम बीज खरीद लें या फिर हमारे पास पक्की पर्ची रसीद होनी बहुत ज़रूरी है ताकि भाई आगे हम बता सकें हैं। और फिर भाई जड़े खाली खेतों में दिखे हैं कि भाई कितने जुताई का काम चल रहा है कितने भाई गोड़ी लेजर लेवल का काम भी चल रहेगा। और जिन भैया ने भाई नू मान के कपास की अगर बात करी जाए तो बिजाई भाई इस महीने के अंत ही हमने पूरी कर लेनी है क्योंकि नरमा की जो उन्नत किस्म है और देसी कपास की सिफारिशुदा किस्में ही हमने लेनी है क्योंकि कपास ते बढ़िया फुटाव के लिए भाई पूरे खेत की तैयारी सही ढंग से करनी ज़रूरी है। पहली जुताई हमने मिट्टी पलटने वाला हल से करनी है और इसके बाद में जो लगभग नू देखें भाई 3-4 गहरी जुताइयाँ हैं वो भाई कि अपने पास पलाऊ है किसे भाई गहरी जुताई के लिए भाई यार रोफाड़े बहुत से आधुनिक यंत्र किसान भैया दो रहे हैं सब ने भाई पता हो कि गहरी जुताई का अलग महत्व है तो बिजाई भाई कटे हम अपने खेत में भाई सही बत्तर गिल्ली आल होना ज़रूरी है क्योंकि पहले तो भाई नू कया कर दिए आके भाई अपना जो दौरा पड़े हुआ है दौरा पड़े हुआ करना ज़रूरी हो है ताकि जो जमाव हो कपास का ठीक हो जाए। और आगे चाल के फिर नू देखा भाई इसके लिए भाई खेत में अच्छा पड़े हुआ गिल्ली बत्तर जमीन सो लगा कि एक सार जरूर करके हमने खेत में पौधा की सही संख्या हमने बीज की मात्रा है वह ठीक लेनी है। बीज का उपचार करने की बिजाई करें भाई इसमें नर में न फिर रोया ने रहित छत लेके 8-1 किलोग्राम रोए युक्त 8-10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इस्तेमाल हमने करना है। और देसी कपास में भाई 5-1 किलोग्राम बीज काफ़ी रहा इसमें शंकर किस्मा का रोए उतार की बीज हमने लेना है प्रति एकड़ प्रयोग करना हमने बीटी शंकर किस्मा की बात अगर आ जाए तो भाई 850 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से हमने ले इसमें। बीजा ने चार तक लेके और पाँच एक सेंटीमीटर के आराम ने इसमें जो है बिजाई करनी है, तो भाई इस हिसाब से हम जो है बिजाई कर सके हैं। और फिर भाई ये देखे हैं कि अपना जो टाइम आ रहा है लगभग भाई अपनी गर्मी का टाइम है भाई, आगे चाल की कुछ फसल बाड़ी भी होगी भाई, कितने न कितने मंडीकरण भी होने लग रहा थोड़ा मोड़ा किसान भैया का, तो कुछ बाजार भाव भी आ रही है भाई। अति बता दी है भाई गेहूँ का भाव रहा है रोहतक की मंडी में 2585 का, पानीपत में रहा है 2555 का, और गुड़गांव में भाव रहा 2600, फरीदाबाद में 2600 रुपये प्रति क्विंटल का। जो चने के भाव हैं रोहतक की मंडी में चना रहा है 6300 रुपये, पानीपत में रहा है 6500 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़गांव में रहा 6800, फरीदाबाद में भाव रहा है 7100 रुपये प्रति क्विंटल का। और जो के भाव रहे हैं भाई रोहतक में 2200 का, पानीपत में 2500 का, गुड़गांव में 2500 का, और मूंग का भाव रहा है रोहतक में 2700 का, पानीपत में 9700 का, मसर के भाव रहे हैं भाई रोहतक की मंडी में 7800 का, पानीपत में रहा है 7600 रुपये प्रति क्विंटल का, अरहर के भाव रहे हैं भाई रोहतक की मंडी में 10300, पानीपत में रहा है 10600 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़गांव में 10600 रुपये प्रति क्विंटल का। तो ये थे भाई कुछ बाजार भाव। और न्यू देखे हैं कि भाई जड़ती अपनी कुदरती खेती की बात आ जाए तो भाई हर एक चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि कुदरती खेती का भी अड़ा एक अलग महत्व है भाई, बहुत ज़रूरी है, वह भी अपने बिल्कुल नरोगा खाना सुखी रहना, तो इसके ऊपर एक पूर्व प्रसारित बातचीत है भाई कुदरती खेती, तो यह भैया ने बातचीत सुनवा दी है।
3: आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा कुदरती खेती, ये किस तरह कर सके हैं और क्या फ़ायदा है, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रीति मलिक जी को। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं पांडु पिंडारा जींद में। डॉक्टर साहब स्वागत आपका स्टूडियो में।
4: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
3: सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बताओ कि कुदरती खेती यानी कि जो प्राकृतिक खेती है वो, और जो अभी खेती बाई कर रहे हैं वो, और एक ऑर्गेनिक खेती, ये तीन चार बात अभी निकल के आ रही हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है?
4: दरअसल जी अब हम सीधी बात करें तो हमारे जो अब फिलहाल जो हम खेती कर रहे हैं वो हमारी जो केमिकल वाली खेती है,
3: रसायनों का,
4: हाँ रसायनों का जो इस्तेमाल है वो, उसके कारण हमारा दुष्प्रभाव काफ़ी बढ़ने लग गया है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं हर चीज़ के लिए कीटनाशक, फफूंद नाशक या खरपतवार नाशक इस तरीके के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारी सेहत पे भी और जो हमारी जो ज़मीन है उसकी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके कारण हम इसके लिए एक विकल्प के रूप में सोच रहे हैं कि क्या आए, तो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिक खेती के बारे में विकल्प आया, तो उसमें हमने देखा है उसमें भी कुछ ना कुछ हमें बाहर से करना पड़ता है, इनपुट के रूप में हम बाहर से ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम केचुआ खाद जो है वो भी बाहर से ला सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन अब जो नया ये आया है प्राकृतिक खेती, इसके अंतर्गत हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना जी।
3: अच्छा।
4: अगर आपका केचुआ खाद भी है तो अगर वो उसी खेत में बनाई हुई हो तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे खेत की या फिर बाहर से जिलों से लाई हुई केचुआ खाद का इसे इस्तेमाल नहीं करना है, और ना ही कोई उत्पाद जो ऑर्गेनिक हो उसका इस्तेमाल करना है, खेत में ही जो चीजें हैं उन्हीं से हम इसमें खेती करते हैं, तो ये हम तीनों में फर्क समझ सकते हैं
3: जी। तो डॉक्टर साहब इसमें फिर क्योंकि देखो मेन तो उद्देश्य हमारा यही होता है कि पैदावार हमने ज़्यादा मिला है, अब जो खेती भाई यूरिया खाद डाल के और रसायन का इस्तेमाल करके कीड़ों बीमारियों से बचा के जो पैदावार लेने लग रहे हैं, क्या उतनी खेती उतनी पैदावार हमने दूसरे जो साधन ऑर्गेनिक है या प्राकृतिक है उन तो मिल जाएगी?
4: हाँ जी, एट पार ही आती है, मतलब उसके आस पास ही आती है
3: जी।
4: क्योंकि बात यह है हमारा मेन उद्देश्य तो होता है जी उपज
3: जी,
4: उपज लेने के साथ साथ हमें जो हमारा लागत है खेती में उस पे भी काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो किसान भाई है वो फसल बेच के ही तो कमाता है
3: जी।
4: अगर उसका जो हमारा उत्पादन करने में अगर ज्यादा लग गया तो फिर हाँ तो फिर उपज का भी कोई फायदा नहीं है ज्यादा का, तो जो हमारी पुरानी खेती है उसके अंतर्गत जो हम ज़्यादा जैसे पेस्टिसाइड है, हमारे जो कीटनाशक है, फफूंद नाशक है, इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं जी, बीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पानी की कमी होती जा रही है, तो खेती करनी मुश्किल हो रही है, और जो हमारी जो फसलें जो नई आई थी जो हमारे 60 के दशक में आई हैं, जो छोटी बोनी किस्म की फसलें हैं उनमें ज़्यादा रासायनिक खाद ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका भी एक सीमा होती है जी। एक रासायनिक खाद के बाद एक वैरायटी में जितना डालेंगे हम खाद उससे उपज बढ़ने की एक सीमा है, अब धीरे धीरे उस सीमा तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद चाहे आप कितनी भी खाद डालें वो उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो हमारे पास क्या विकल्प है? हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम अपने खर्चे कम करें। तो खर्चे कम करने के लिए हमें प्राकृतिक खेती पर आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम अपने बाहर से खरीदी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। खेत की चीज़ों को ही, अपने जो केंचुए हैं जो हमारे खेत में पहले से ही मौजूद हैं, उन्हीं की संख्या बढ़ाते हैं हम, तो उसी से खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी सारे हम इसमें घटक होते हैं जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक खेती करते हैं, तो ये हमारे हमारे जो लागत है उसको घटाएगा, तो उसके कारण हमारा फायदा आखिर में बढ़ेगा, तो उपज उसके बराबर सी है।
3: डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा है कि बहुत से भाई जिन्होंने कि ऑर्गेनिक का काम शुरू कराया है, यानी कि जो रासायनिक खाद और दवाई नहीं डालते, तो उनमें जब वो शुरू करे हैं तो पैदावार में थोड़ी कमी देखी गई है।
4: हाँ, ऑर्गेनिक में देखी गई है जी।
3: जी,
4: उसमें 3-4 साल लगभग थोड़ा कम रहता है, फिर जमीन रिकवर कर लेती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में हमने देखा है किसानों के खेत पे भी कि इसमें इतनी उपज कम नहीं जाती है
3: जी,
4: ऑर्गेनिक खेती के।
3: तो अब जो रासायनिक विधि से खेती तैयार करने लग रहे हैं, इसमें फिर और क्या क्या नुकसान आप मानते हो?
4: उसमें जी कई प्रकार के नुकसान हैं। पहला तो नुकसान हमारा यही हो गया, अगर आप इस चीज़ से समझिए, अगर हम जमीन में हम सीधा यूरिया या फिर हम ये अपना MOP हो गया, DAP हो गया, SSP, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं
3: जी।
4: इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि अगर हम इंसानों में कहें कि आप जी, आपको आखिर में तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम क्यों ना भोजन लेना बंद कर दें और सीधी दवाइयाँ खा लें, कैल्शियम की गोली, भाई दूध मत पियो, 500 ml की सुबह शाम की गोली ले लो, तो क्या उससे जी हो पाएगा गुजारा? नहीं हो पाएगा ना। ये चीज हम अपनी खेती के बारे में समझे कि जब हम उनको, हमारी जमीन है जो, वो जीवित चीज है, जमीन में जितना जीवन नीचे है, ऊपर जो हम प्रकृति में रहते हैं उससे ज्यादा है, 10 गुना है, बेशक से वो सूक्ष्म जीव है लेकिन जीवन ज्यादा है वहां। तो अगर आप उनका भोजन ही नहीं देंगे, आप जमीन को भोजन नहीं दे रहे हैं, जमीन का भोजन क्या हुआ? हमारी जो खाद है, हरी खाद है, या फिर अपनी जो गोबर की खाद है, या अपनी वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ें आप उन्हें नहीं देंगे और सीधी आप टैबलेट दे रहे हैं। टैबलेट क्या? यूरिया की टैबलेट, MOP की टैबलेट, DAP की टैबलेट, ये आप टैबलेट दे रहे हैं, तो जी आपकी फसल किस प्रकार की होगी? तो हमारी सेहत पे उल्टा असर आप देख लीजिए आजकल दिल्ली NCR में या फिर और जगह कितने ज़्यादा हॉस्पिटल बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी सेहत ठीक नहीं है, वो सेहत खराब इसलिए हो रही है, पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल रहे हैं हम, वो हमारे पानी के साथ या खाने में जो उपज हुई है उसके अंदर उसके अवशेष जाएंगे, वो हम जब खाएंगे तो हमारे शरीर में आएंगे, उससे हमारा कैंसर बढ़ रहा है। दूसरी आपकी ज़मीन की सेहत की मैंने बात करी थी, ऑर्गेनिक मैटर जितना कम होएगा जी, कार्बन जितना कम होएगा, उतना हमारा जो भोजन है कीटाणुओं को वो नहीं मिलेगा। जब जमीन में कीटाणुओं को भोजन ही नहीं मिलेगा, तो जो पोषक तत्व बनाते हैं, मिनरलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत भोजन वो पौधे जिस रूप में लेते हैं वो जीवाणु बनाते हैं, जब उन्हें ही भोजन नहीं मिलेगा, वो भूखे मर जाएंगे, तो फिर वो पौधों को क्या पोषक तत्व देंगे? तो हमारी जमीन की सेहत भी खराब हो रही है जी। तो ये काफ़ी सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स
3: और बल्कि ज़्यादा

0: मशीनरी इस्तेमाल करने से भी।
1: हाँ, मशीनरी भी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है जी, तो उसके कारण क्या है, आपकी जितनी भारी से भारी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा हार्ड पैन बनने लग रहा है जमीन के नीचे, जितना वो,
0: सख्त
1: हाँ, सख्त
0: सख्त
1: सख्त परत बनने लग रही है।
0: जी
1: वो जितनी सख्त परत बनेगी, उससे आपने देखा है चोआ ऊपर आ गया तो वो उससे नीचे पानी आ गया, उसके कारण कई जगहों पे दूसरी फसल नहीं ली जा रही है,
0: जी
1: कई जगह ज्यादा दोहन हो गया है हमारा, जो ये फसल चक्र है धान का और गेहूं का, उसके कारण पानी का ज्यादा दोहन हो गया है तो वहां नीचे जा रहा है चोआ, तो दोनों तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो इसमें हमें जमीन की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें हमें अपना समावेश करना पड़ेगा अपनी दलहनी फसलों का। जैसे अगर आपकी धान और फसल चक्र, इसका गेहूं का फसल
0: गेहूं
1: चक्र है, उसके बीच में आप ग्रीष्मकालीन मूंग ले सकते हैं या फिर ढैचा ले सकते हैं। ढैचा को आप 40-45 दिन के बाद जमीन में बांधें तो उससे आपकी जमीन की उर्वरता बढ़ती है। दलहनी फसलें लेंगे तो दाल तो हमें उपलब्ध होगी ही,
0: जी
1: उसके साथ साथ उसके पत्ते झड़ेंगे या फिर उसकी जो जड़ें आपने निकाल के देखी है तो उसमें नोड्यूल्स होते हैं, वो जो
0: गांठ
1: कि,
0: वहां छोटी
1: हाँ,
0: छोटी
1: गांठ होती है छोटी छोटी,
0: जी
1: उन गांठों में वो जीवाणु रहते हैं। वो जीवाणु जो पौधा अपने जड़ों से भोजन लेगा उसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बदले में जो हमारी जो वातावरण में जो नाइट्रोजन उपलब्ध है वो पौधा जिस रूप में लेता है वो उस रूप में उपलब्ध करा लेगा, तो आपकी यूरिया की खपत नहीं होगी, ऊपर से आपकी जमीन की उर्वरता भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार की चीजें हम कर सकते हैं।
0: जी तो अब बात करें प्राकृतिक खेती की, तो इसमें क्या तरीका क्या रहता है? जिस तरह जो अपन परंपरागत अभी जो खेती चल रही है उसमें तो हल चलाना है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है, तो इसमें क्या तरीका रहता है?
1: इसमें जी हम इसके चार मेन स्तंभ मानते हैं। एक
0: जी
1: तो इसमें अपना होता है जीवामृत,
0: जी
1: जीवामृत और घन जीवामृत, इसके अलावा दूसरा हमारा हुआ बीजामृत, तीसरा हमारा वापसा होती है और चौथा हमारा आच्छादन।
0: जी
1: तो ये चार इसके मेन, इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बीजामृत की, जीवामृत की अगर हम बात करें तो ये जीवामृत हुआ जीव कल्चर, मत समझ लीजिए जैसे दही का जामन होता है उस
0: जी
1: प्रकार से। तो
0: जी
1: इसमें आप क्या करेंगे, 180 लीटर पानी लेंगे,
0: ठीक है
1: उसमें आप उसके साथ लेंगे आप 10 किलो गोबर देसी गाय का,
0: जी
1: 10 किलो गौमूत्र, उसके अलावा आप 1 से 1.5 किलो बेसन और 1 से 1.5 किलो गुड़, और उसके अलावा किसी पेड़ के नीचे की या फिर मेंढ की मिट्टी।
0: जी
1: मेंढ की मिट्टी का एक मुट्ठी लेने का उद्देश्य ये है कि उसमें जीवाणु का ज्यादा जीवाणु होते हैं, जो लोकल वहां के जीवाणु उस खेत के, तो
0: जी
1: वो जीवाणु कल्चर दही का जामन की तरह हो गया वो।
0: ठीक
1: तो
0: है
1: इन चीजों को हम एक ड्रम में डालेंगे और ये सारी जो भी हमने चीजें बताई उसमें डाल के उसको 2 से 3 मिनट सुई की दिशा में घोलेंगे।
0: अच्छा
1: हाँ, सुई की दिशा में घोलेंगे, उसके बाद उसको 72 घंटे के लिए हम ढक
0: छोड़
1: देंगे।
0: दें
1: ठीक है, 72 घंटे के लिए हम ढकेंगे और छांव में रखेंगे, और इसमें दिन में 2 बार हम दो दो दो मिनट के लिए सुबह और शाम को उसमें उसको चलाएंगे,
0: घुमाना जी
1: घुमाएंगे।
0: जी
1: तो इसमें इस प्रकार से आपका जो जीवामृत है वो 3 दिन में तो आपका गर्मियों में तैयार हो जाएगा और सर्दियों में 6 दिन में तैयार हो जाएगा, और इसको आप 7 दिन के अंदर गर्मी में और 14 दिन के अंदर सर्दी में जो आपका पानी देते हैं खेत में उसके साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये जीवामृत है।
0: जी
1: तो ये आप महीने में 2-3 बार स्प्रे भी कर सकते हैं। तो पहला घटक तो हमारा ये,
0: तो यानी कि जब हमने पड़ेवा करना है उस
1: हाँ,
0: टाइम पर हम
1: जब
0: ये साथ
1: आप
0: में
1: पानी
0: देस
1: देंगे,
0: रहे ये
1: हाँ
0: इसके साथ में
1: हाँ हाँ
0: देस रहे
1: पानी के साथ,
0: जी
1: तो ये जीवामृत जब वहाँ खेत में पहुंचेगा
0: जी
1: तो ये वहां पहुंच के जो हमारा जामन पहुंच गया, जो
0: जी
1: हमारा घोल बन के, और जो हमारा हमने बेसन दिया है ये प्रोटीन का काम करेगा, मतलब प्रोटीन सोर्स का जीवाणुओं के लिए, और कार्बोहाइड्रेट उनका भोजन बन जाएगा ये गुड़ से,
0: जी
1: तो ये पूरा जीवाणुओं के साथ उनका भोजन भेज रहे हैं हम। तो वहां जाने के बाद जीवाणु ज्यादा से ज्यादा होंगे खेत में, जब ये जीवाणु एक सही संख्या में बढ़ जाएंगे उसके बाद वो जो हमारा जो नाइट्रोजन का लेवल घट रहा है या फास्फोरस का घट रहा है वो उसको अपने आप बढ़ा देंगे, फास्फोरस को घोल देंगे और जो नाइट्रोजन है उसको खेत में बढ़ा देंगे, तो आपको बाहर से डालने का जरूरत नहीं पड़ेगी,
0: जी
1: ये धीरे धीरे खेत तैयार हो जाएगा।
0: ठीक है
1: दूसरा हम कर सकते हैं इसमें घन जीवामृत, इसमें भी आप देसी गाय का गोबर 150 किलो लेंगे, 1 किलो गुड़,
0: 150
1: हाँ क्योंकि ये सूखा है,
0: अच्छा
1: हाँ 150 किलो देसी गाय का गोबर, 1 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, और इसमें खेत की मेड़ की मिट्टी वही या फिर पेड़ के नीचे की मिट्टी एक
0: ठीक है
1: मुट्ठी,
0: ठीक
1: और
0: है।
1: जो गौमूत्र है वो आवश्यकता अनुसार। इसमें जो हमने पहले सारे घटक लिए हैं
0: इसमें पानी नहीं लेना अभी
1: अभी नहीं, अभी
0: हाँ
1: हम धीरे धीरे मतलब इसमें
0: जी
1: मिलाएंगे। सबसे
0: जी
1: पहले आप इन सारे को मिक्स करके जो घोल है उसमें धीरे धीरे उनको

0: ठीक है
1: जीवामृत कितने?
0: ठीक है, हमने पड़ेवा के टाइम तो बीजामृत है वो डाल दिया, और उसके बाद जब
1: जी
0: हमने जब वो बिजाई वगैरह हो गई है उसके बाद में ये दूसरा इस्तेमाल
1: हाँ,
0: कर सके हैं।
1: इसके अलावा आपका बीजामृत है, वो हमने जीवामृत के बारे में बात करी
0: जीवामृत
1: थी।
0: जी
1: तो बीजामृत के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम लेंगे 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर और 5 किलो गोमूत्र और चूना लेंगे हम 50 ग्राम।
0: अच्छा
1: इसका इस्तेमाल करेंगे और साथ में अपनी वही खेत की या मेड़ की
0: मिट्टी।
1: मिट्टी, क्योंकि उसमें हम स्प्रे नहीं करते हैं, इसलिए वहां पे जो अपने प्राकृतिक जो जीवाणु है वो रहते हैं, इसलिए मेंढ पे हम कभी स्प्रे नहीं करते, तो वहां से हम उनका कल्चर लेंगे। तो इन सब को भी हम उसी प्रकार से टंकी में डाल के 2 से 3 मिनट घोलेंगे। इस घोलने के बाद इसे बोरी से ढक देंगे और छांव में रख देंगे। सुबह शाम वही 2-2 मिनट इनको फिर से घोला जाएगा सुई
0: जी
1: की दिशा में।
0: जी
1: तो ये आपका 24 घंटे में तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको बीज से उपचार करके खेत में बीज बो देंगे। ये अपना बीज अमृत हो गया।
0: अच्छा, ये बीज से उपचार
1: हाँ,
0: करने के
1: बीज के
0: लिए।
1: उपचार के लिए बीज अमृत, और जीव अमृत अपना जो सिंचाई का
0: जी
1: पानी है उसके साथ।
0: ठीक है
1: ठीक है जी। तो तीसरी बात हम करेंगे अपनी आच्छादन की। तो
0: जी।
1: आच्छादन के बारे में आप जानते हैं कि आच्छादन कई प्रकार के होते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे जो पुरानी फसलें हैं, जो उनके अवशेष बच गए हैं, उसको हम बिछावन के रूप में खेत के ऊपर बिछाएंगे, उसे आच्छादन कहते हैं।
0: जी
1: तो उसके कई सारे लाभ हैं। पहला लाभ तो हमारा यही हो गया कि हमारे आच्छादन के कारण जो आपकी जमीन की नमी है वो बची रहेगी। जमीन की नमी बची रहेगी तो पानी का बचाव होगा। उसके अलावा आपके जो खरपतवार हैं वो कम उगेंगे, ना के बराबर, क्योंकि आपने जो बुआई करी है उसमें तो आपने बीज डाल दिए, उसके अलावा जो जमीन है वो आपने खाली नहीं छोड़ी, उसको आच्छादन से ढक रखा है। जब जो जो हमारे वीड हैं, जो हमारे खरपतवार हैं, जब उनको उगने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी, तो वो उगेंगे नहीं, तो खरपतवार नाशक की आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ होगी। उसके अलावा हमारे जो दाने हैं उनको चिड़िया व चुग लेती हैं,
0: जी
1: उन्हें भी दिखाई नहीं देंगी, तो उसका भी वो भी फायदा होगा आच्छादन का। और आच्छादन से हमारी जो भूमि का कटाव है वो भी नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा है बारिश की सीधी बूंदों से भूमि का कटाव होता है। जब जमीन पे आच्छादन बिछा होगा तो हम भूमि का कटाव भी नहीं होगा, पानी का बचाव होगा
0: यानी
1: धूप से।
0: कि जो भाई पॉलीथीन बिछा हुए हैं अपनी जमीन पे, उसके बजाय आप जो
1: हाँ, पुरानी फसलों के
0: पुरानी
1: अवशेष हैं,
0: फसलों के अवशेष हैं वो
1: हाँ
0: बिछा हुए
1: हाँ
0: हैं
1: वो ज्यादा बेहतर है,
0: जी, यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के बजाय जो कुदरती रूप से
1: कुदरती रूप से।
0: हमारे खेतों में जो खरपतवार उगते हैं या कपास की बनस्पति होगी या उस तरह की जो पुराल वगैरह होगी उससे ढक दें
1: हाँ, उसे किसान जलाने के बजाय साथ
0: उस
1: में, क्योंकि
0: ढकने के
1: जलाने
0: लिए।
1: से क्या होता है जी, जो हमारे जीवाणु हैं वो, आप सोचिए कि इतना ज्यादा जब तापमान होगा तो जीवित चीज बचेगी ही क्यों,
0: जी
1: तो सारे जीवाणु जो हमारे मित्र कीट हैं या फिर हमारे जो संरक्षक जीवाणु हैं जो हमारे खेत में पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। जब वो खत्म हो गए तो हमारी जमीन की क्षमता है वो चली जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसकी पहले ही समस्या है जी,
0: जी
1: 0.2 से 0.3 तक रहता है हरियाणा में, वो बढ़ नहीं रहा है। जब
0: जी
1: आप किसी चीज में आग लगाएंगे तो वो ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वो भी उठ जाएगा, तो वो भी नहीं बचा। कार्बन भी खत्म कर रहे हैं, जीवाणु भी खत्म कर रहे हैं, इसके बजाय उसको अगर उस पर बिछा रहने देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि किसानों को क्या है, कई बार ये खेत साफ दिखना चाहिए, साफ,
0: जी
1: वो
0: जी
1: वैम जो है ना
0: जी
1: वो उनको नुकसान दे रहा है। और
0: जी
1: आजकल तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि थोड़ा बहुत आप अपना खेत में रखिए और बाकी बिक भी जाता है, तो
0: जी
1: थोड़ा खेत पे आच्छादन रखना चाहिए, अच्छा होता है जमीन के लिए।
0: जी
1: उसके अलावा हमारा चौथा जो है वो है हमारा वापसा।
0: जी
1: वापसा का अर्थ इस प्रकार से है प्राकृतिक खेती में कि जो हमारी जड़ें हैं उन्हें सीधी पानी की आवश्यकता नहीं होती, जड़ों को आवश्यकता होती है वाष्प के रूप में,
0: जी
1: मतलब कुछ जो छिद्र हैं वो पानी के होने चाहिए, कुछ खाली होने चाहिए। ज्यादा पानी भरा रहेगा तो उसमें ज्यादा जीवाणु, जो खतरनाक जीवाणु, उनके पनपने की संभावना रहती है।
0: लेकिन डॉक्टर साहब ये देखा गया कि जब तक ठोक के पानी ना दे दें इतने लगता ही नहीं भी पानी भी दिया गया
1: हाँ,
0: है।
1: ये कई चीजों में, अब आगे फिर वही जड़ गलन की समस्याएं, वो सारी
0: जी
1: चीजें आती हैं,
0: जी
1: तो उनके समाधान के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे वापसा लाइंस बिछाई जाती हैं, मतलब आपकी जो खेत की लाइनें हैं जिसमें आपने पौधे उगाए हैं उनके बीच में 4-5 इंच की
0: खाली जगह
1: खाली
0: छोड़ दे।
1: खाली थोड़ी खुदाई करके, चार
0: जी
1: पांच इंच चौड़ी, वो वापसा, उसमें हम पानी देंगे। उसमें पानी देंगे तो जो हमारे साइड में जो लाइन है पौधों की वो वहां से

0: रिस रिस के पानी वाष्प के रूप में उनके पास जाता रहेगा, और ये जो वापसा लाइन है हमारी उसके ऊपर हम आच्छादन भी डाल देंगे, तो जिससे कि जो पानी है उसकी बचत, वो पानी उड़ेगा भी नहीं और ज्यादा समय तक वो पानी खेतों में पौधों के लिए उपलब्ध रहेगा, वहां से वाष्प के रूप में जाता रहेगा।
1: यानी सीधे पौधों के जड़ों में पानी देने के बजाय
0: हाँ, वापसा
1: ऊपर,
0: लाइन।
1: हाँ बीच में खाली जगह छोड़ दें और उसके दोनों किनारों पर हम पौधे लगावा
0: हाँ,
1: और बीच में पानी दे दें ताकि
0: उसके
1: वो
0: ऊपर
1: रिस
0: आच्छादन।
1: के पानी पौधों की जड़ों तक पहुँच जाए, सीधा पानी उसमें देने के बजाय ये तरीका उसमें होना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: जी तो इसका और की कुछ फ़ायदा रहेगा?
0: इससे आपके पानी की बचत होगी।
1: जी
0: एक तो आप सीधा पानी लगाएंगे, ज्यादा पानी भी लगेगा और उसका नुकसान भी, तो
1: जी
0: वाष्प के रूप में भी जाएगा और आपकी खेती के पानी की भी बचत होगी। उसके साथ साथ जब आप वापसा लाइन करते हैं तो आपके जो खतरनाक पैथोजन होते हैं वो भी कम होते हैं, इसमें जो जड़ गलन की समस्याएं हैं वो सारी चीजें वो नहीं होंगी,
1: जी
0: वो पैथोजन है उससे बचाव होगा।
1: अब डॉक्टर साहब बात ये आवा है कि अपना जिस तरह प्रचलन है कि गेहूं और धान दोनों में ज़्यादा पानी लगे और दोनों का बिजाई का तरीका इस ढाल का है कि वो तो धान तो सीधा पानी में ही बोया जाए, तो उनमें ये तरीका इस्तेमाल हो सके है,
0: उनमें धीरे धीरे इन तरीकों को लोग अपनाने लगे
1: आना
0: हैं।
1: पड़ेगा।
0: हाँ, आना पड़ेगा।
1: जी
0: तो जब तक हम धान में भी, हम सीधा धान लगाने के बजाय हम धान की सीधी बिजाई भी अपना काफी प्रचलित है, हम उस पर भी आ सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि जब हम पानी खड़ा करते हैं खेत में, उसके बाद हम जब गाद उठा के उसमें, तो उसमें क्या होता है, आपके जो बारीक कण है सबसे पहले बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार से खेत पूरा ब्लॉक हो जाता है। जब पानी खड़ा हो जाएगा तो
1: जी
0: पानी जमीन के अंदर भी नहीं जाएगा, वैसे भी हमारा जो जो जब भूजल स्तर है वो नीचे जाने लग रहा है, और वही मॉनसून का समय होता है उसमें हम इस प्रकार से खेती करेंगे तो भूजल स्तर भी नीचे जाने लग रहा है। उसके अलावा ये जब हम इस प्रकार से गाद उठा के जब करते हैं खेती, उसके कारण जमीन सख्त भी होने लग रही है,
1: जी
0: क्योंकि वो पानी खड़ा रहता है और भारी भारी मशीनरी चलती है तो उसके कारण जमीन सख्त होती है, तो उससे भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आगे आने वाले समय में प्राकृतिक खेती एक अच्छा विकल्प है, अगर किसानों को अपनी आय को बढ़ाना है और अपने जो बढ़ने वाले खर्चे हैं उन्हें सीमित करना है, तो ये बहुत अच्छा विकल्प
1: स्वास्थ्य
0: है।
1: ठीक रखना है
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: भी,
0: हाँ जी,
1: और संसाधन है वो अपने बचा के रखने हैं जो
0: क्योंकि
1: प्राकृतिक
0: आने वाले
1: संसाधन।
0: समय में आप देख लीजिए, पहले नहरी पानी कितने दिनों में आता था और अब कितने दिनों में आता है, वो
1: जी
0: धीरे धीरे ये घटता ही जाएगा और
1: जी
0: हमारा भूजल स्तर है वो भी नीचे ही जाता जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ विकल्प लाने ही पड़ेंगे। और इसमें जो प्राकृतिक खेती है इसमें हम एक और चीज का ध्यान रखते हैं कि जैव विविधता,
1: जी
0: कि आपको एक ही चीज पे नहीं रहना है। जैसे हम आ गए हैं ये धान और जो गेहूं का फसल चक्र है, इसमें क्या किया हमने, अनाज की फसलों पे ही हमें,
1: जी
0: तो इसमें हम इस चीज को प्रोत्साहित करते हैं कि एक चीज पे ना रहे, आप विभिन्न प्रकार की फसलें लें, विभिन्न प्रकार के दलहनी और हमारे अनाज वाली फसलें उनका एक समावेश करें एक साथ, और मिक्स्ड मतलब मिश्रित खेती को।
1: मतलब
0: हाँ
1: उसमें ये है, दाल भी हो, अनाज
0: हाँ
1: भी हो, सब्जी भी
0: हाँ
1: हो, बागवानी भी साथ में
0: तो
1: करें।
0: इससे ये होता है जी, जो अलग अलग प्रकार के पौधे हैं अगर आप मिश्रित खेती करेंगे, जैसे दो लाइन किसी एक फसल की हैं, दो अलग फसल की हैं,
1: जी
0: तो जो इस फसल का जो कीट है उसे दूसरी लाइन पार करने जाने में दिक्कत आएगी, तो बीच
1: जी
0: में एक अवरोध है, तो उसके कारण आपके कीटनाशकों की संख्या घट जाएगी, कीटनाशक स्प्रे करने की। उसके अलावा जो जड़ें होती हैं,
1: जी
0: जड़ें होती हैं वो अलग अलग केमिकल रिलीज करती हैं, वो जो जड़ हैं वो अलग अलग तरह के माइक्रोब्स को, जीवाणु हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हमारे खेत में बढ़ेंगे तो
1: जी
0: वो उसके कारण हमारे जो खेत में पोषक तत्व है उनकी भरपूर प्रचुर मात्रा में रहेंगे वो, तो इसलिए जितनी ज्यादा अलग अलग तरह की फसल, अलग अलग तरह की वैरायटी वो समावेश करेंगे तो हमारा जो जैव विविधता है उससे भी हमारे जो खेत का वातावरण है वो बढ़िया होगा, और प्राकृतिक खेती में हम इसमें बहुत बढ़ावा देने के लिए कहते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बताया है कि जो अभी वर्तमान हम खेती कर रहे हैं उसके काफ़ी नुकसान देखने में आ रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से कह लें या ज़मीन की दृष्टि से कह लें वो, और अब प्राकृतिक खेती की तरफ अगर हम अपना रुझान करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारे संसाधन बने रहेंगे, हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहेगी। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर प्रीति मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: या तो सुनी भैया ने बातचीत कुदरती खेती के बारे में, और भाई काफ़ी टाइम हो गया ही भी टाइम मैंने देखे हैं कि भाई अपना जो आज भैया ने साखा सुनवावांगी भूरा बादल, तो भाई इसका गायक कलाकार होंगे रामकृष्ण चौहान और उनके साथी।

ये तो सुनिया भैया ने साखा भाई भूरा बादल गायक कलाकार राम कृष्ण चौहान और उनके साथी। और भाई देख ले हैं घड़ी का नहीं, इसी के साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। थोड़ी देर में भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का यूरोप तक केंद्र है। और भाई सुनेंगे

0: कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाइयों, इसमें शुरुआत करेंगे एक बातचीत के द्वारा, क्योंकि ये अपना जो उच्च रक्तचाप है उसके के कारणों हैं, उससे किस तरीके से बचा जा सके है, के उसके उपचारों हैं, तो बहुत ही गहनता की बातें हैं। एक पूर्व प्रसारित बातचीत है, ये भैया ने सुनवा दी है।
1: भाई, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा रक्तचाप, कारण और उपचार। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर परमेल चौधरी जी को। आप सर्जन हैं और काफ़ी लंबे समय से आपने कार्य किया है और रोहतक से ही आप पधारे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए आपने बुलाया
1: जी।
2: और सर, मेरी जो सर्विस रही है, जैसे सरकार में भी सर्विस रही है
1: जी,
2: हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में काफ़ी सालों तक काम किया है, तो सर कैजुअल्टी में इमरजेंसी जो हमारा डिपार्टमेंट होता है उसमें अक्सर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आते थे कि जी बीपी हो गया है।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप छोटी छोटी बात पे देखा जाए तो गांव में अक्सर नहीं कहते भाई क्यों मेरा बीपी बढ़ावा है।
2: हाँ,
1: ये छोटी सी बात होगी, मेरा तो बीपी बढ़ गया।
2: जी जी जी
1: तो
2: जी।
1: उनको बेशक तो ये ना पता हो, सिर में अगर थोड़ा भारीपन भी लगे तो भी उनको यूँ होता भी बीपी बढ़ गया हमारा।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये बीपी असल में है क्या और किसको कहेंगे भाई बीपी बढ़ गया है या क्या? थोड़ी बहुत कई बार टेंशन होती है किसी बात को लेके, कोई कोई मन में कोई विचार है या कोई इस तरह की बात होती है तो भी उसको
2: बीपी मान
1: मान
2: लेते हैं।
1: जी
2: जी जी देखिए सर, पहली बात तो ब्लड प्रेशर का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो भाई यही है कि खून का रक्त प्रवाह जो उसका प्रेशर क्या है,
1: दबाव उसका
2: वो दबाव क्या है आपके। जैसे हार्ट में से जब खून निकलता है तो हमारी धमनियों में दौड़ रहा होता है
1: जी,
2: तो हम उसको मापते हैं। जैसे आपने देखा वो बाजू के ऊपर वो लगा के एक कफ होता है, बीपी कफ होता है, एक वो कपड़े का बना हुआ होता है, उसको हम लपेटते हैं
1: जी
2: तो सर उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि हार्ट ने जो पंपिंग की है तो उसका जो प्रेशर है धमनियों तक क्या गया और धमनियों ने हमारे जो हमने जो कफ जो लपेटा है उसके ऊपर क्या पड़ा, और उसको हम नापते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी माप। उसके कई सारे पैमाने हैं लेकिन जनरली हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही मापते हैं, वही पैमाना चलता है रूटीन में। और सर ये जो बीपी है इसको नॉर्मली तो होता ही है, जैसे जो उच्चतम जिसको हम बोलेंगे तो वो यूँ मानिए कि जवान जो बच्चे होते हैं, लड़के हैं या छोटे बच्चे होते हैं तो उनका लगभग जो जो सिस्टोलिक जिसको बीपी बोलते हैं हम, जो ऊंचे वाला जिसको आप देसी भाषा में बोलते हैं, वो लगभग होता है 100 से लेकर 140 तक जा सकता है। वो होता है अलग अलग उम्र के अकॉर्डिंग, हमारे जो डॉक्टरों की नज़र में वो नॉर्मल हो सकता है, हो सकता है किसी का 100
1: जी
2: जो सिस्टोलिक है ऊपर वाला वो हमारी नज़र में नॉर्मल हो सकता है, उसकी उम्र के और उसके जो हैबिट हैं, उसका जो शारीरिक बनावट है
1: जी,
2: उसके आधार पर। और जो हो सकता है कि कोई हमारे पास आए जैसे कोई 40s में, जैसे 40 से 50 साल की उम्र में या 50 से 60 साल की उम्र में या 60 से 70 साल की उम्र में आए तो हम उसका नॉर्मल मानेंगे। अगर उनका उच्चतम जो जाता है सिस्टोलिक वो 140-139 तक गया है तो हम उसको बिल्कुल नॉर्मल मानेंगे,
1: सामान्य
2: मानेंगे। और जो न्यून जो जो डायस्टोलिक जो होता है वो होता है लगभग मानिए कि 70 से लेकर के 90 तक, 89 तक जा सकता है, 90 पे जाएगा तो हम थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे, थोड़ी सी चिंता बन जाएगी
1: जी।
2: तो ये होता है सर,
1: यानी कि ऊपर का और नीचे का दो तरह के ये होते हैं, माप होते हैं
2: जी जी।
1: और ऊपर वाला आपने बताया 100 से लेकर 139 तक का
2: जी जी,
1: और नीचे का बताया आपने 70 से
2: लेकर
1: 89-90 तक।
2: हाँ,
1: मतलब
2: 90 से एक पॉइंट का, हाँ 90 तक जाएगा तो हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी हम विचार विमर्श करेंगे, चिंता करेंगे
1: जी,
2: या उसको जो एडवाइस करनी वो करेंगे। अगर 89 तक गया तो अगर उम्र मान लिया 50 से है, 60 है, 70 है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे
1: जी,
2: अगर उसको कोई लक्षण नहीं आ रहा है तो।
1: अच्छा।
2: और सर बीपी बड़े लोगों में बीपी की तो जनरली होती ही होती है समस्या, लेकिन छोटे बच्चों में भी होती है कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या
1: जी।
2: उसके कारण होते हैं आनुवंशिक कारण, जैसे जो उनका हार्ट होता है
1: पीडी कोई समस्या चली आ रही है
2: वो भी हो सकता है सर, लेकिन ज़्यादातर जो कारण होते हैं ना सर वो ये होता है कि हार्ट में से जो हमारी एरोटा एक जो बड़ी नस निकलती है जो आर्टरी जो सबसे मोटे वाली जिससे आधा जैसे ऊपर ब्लड भेजेगा, जैसे जो हार्ट के लेवल से ऊपर भेजेगा और आधा ब्लड जैसे हार्ट के लेवल से नीचे पूरे शरीर में देगा, तो कई बार क्या होता है जन्मजात जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी वो जो एरोटा जिसको मोटे वाली धमनी होती है उसमें कोई ना कोई रिंग बन जाती है

0: कोई ना कोई छल्ला बन जाता है, रुकावट बन जाती है।
1: अच्छे
0: वो 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, वो 5 mm का हो सकता है या उससे कम हो सकता है, और उससे ज़्यादा एक लंबी दूरी का एक ऐसा एक तरह से उसकी लंबाई हो सकती है जो प्रभावित होती है
1: जी
0: जब बच्चा पेट में होता है। तो आनुवांशिक भी हो सकता है। कई बार क्या हमारे खान पान में कुछ ऐसी दवाइयाँ ले ली, जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को भी नहीं पता होता, सब नए लोग होते हैं
1: जी
0: तो उनको नहीं पता होता, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे सिर दर्द की गोली खा ली ऐसे ही,
1: जी जी
0: या कहीं से भी लेके वो हरे पत्ते वाली गोली खा ली, या कुछ भी खा लिया ऐसा ना, जो कोई भी दवा बिना
1: जी
0: डॉक्टर की सलाह के। क्योंकि पहले 4 महीने में जब बच्चा पेट में होता है तो पहले 3 से 4 महीने में बच्चा बन रहा होता है, उसके अंग बन रहे होते हैं, तो उस
1: जी
0: दौरान अगर कोई हम ऐसी औषधि या खान पान या ऐसा रसायन जो फल फ्रूटों में है या कोई ऐसी स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे इस तरह का कोई खनिज एक तरह से जो
1: अत्यधिक मात्रा में हो
0: अत्यधिक
1: या
0: मात्रा में
1: कोई
0: कोई मतलब हम
1: विषालु कोई
0: छिड़काव
1: चीज़,
0: करते हैं
1: जी जी
0: हाँ जहर जहरीली कोई चीज़ है
1: जी
0: जो
1: जी
0: खेतों में या पेड़ पौधों पर छिड़काव करते हैं, उसका सेवन अगर हो गया तो उसकी वजह से भी जो कॉन्जेनाइटल मैंने बोला कि जो एरोटा है उसकी अगर बनावट में गड़बड़ है तो बीपी हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है बच्चे का पता नहीं लगेगा, कोई ध्यान ही नहीं देगा बच्चे में, कोई बीपी उनका भी मतलब 150-200
1: जी
0: तक चला जाता है, और उसका इफेक्ट हमें तब पता लगता है उस बच्चे में जब वो 15-20 साल का होता है, तब
1: जी
0: हम देखते हैं कि अरे कोई गुर्दा फेल लेके आया है, बच्चा है रीनल फेलियर के साथ हमारे पास आया,
1: जी
0: और उस रीनल फेलियर के बाद जब हम उसकी तह तक जाते हैं भाई हाथों का बीपी नापते हैं
1: जी
0: तो उसका बीपी बहुत हाई मिलेगा, पैरों की तरफ उसको फिर से पैर का भी बीपी हम मापते हैं उसी से जो
1: जी
0: हमारा जो इक्विपमेंट जो औजार होता है
1: जी
0: उससे नापते हैं, मशीन से अगर नापते हैं तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, अगर दोनों का सेम ही है तो उसका कारण कुछ और मिलेगा, अगर दोनों में हाथ का बीपी और पैर के बीपी में अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब हार्ट से संबंधित कोई गंभीर
1: समस्या
0: समस्या
1: है
0: है जो
1: जी
0: कि एक सेगमेंट के ऊपर कहीं से बंद है, जिसकी वजह से ना आधे शरीर में तो नॉर्मल बीपी है या उससे कम है और आधे शरीर में बहुत ज़्यादा बीपी है।
1: जी
0: जी
1: वैसे
0: जी
1: अब अक्सर क्या होता है कि क्योंकि इसमें लक्षण होते तभी पता चलता है, वरना तो बीपी का नाप है वो नहीं लेते हैं, जहाँ से नहीं करवाते हैं। तो जब स्थिति बढ़ जाती है और कोई लक्षण आने लगते हैं तभी पता चलता है को हो बीपी है वो इतना ज़्यादा पहुंच गया है।
0: जी जी एक तो ये कहूँगा कि हमारे सभी हैं महिलाएं हैं पुरुष हैं, अगर वो उनको सिर दर्द की अगर समस्या है,
1: जी
0: सिर दर्द की अगर समस्या है तो वो ज़रूर से ज़रूर अपना बीपी मेजरमेंट कराएं, और बीपी ये नहीं है कि जी आप कहीं भी चल के गए हो
1: जी
0: तुरंत भी आपने गए और बीपी नपवा दिया, तो ऐसा नहीं है। उस पेशेंट को कम से कम कहीं पर जाने से चल के आया फिर क्या आया या किसी भाग दौड़ में से या कहीं से आया तो उसके बाद उसको कम से कम 45 मिनट से घंटे भर तक चुपचाप एक जगह से या तो लेटना चाहिए या बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए, उसके बाद ही उसका बीपी का मेजरमेंट लेना चाहिए।
1: जी यानी कि चलने फिरने से और साइकिल चलाने से या घूमने फिरने से इससे भी
0: हाँ
1: उसमें
0: हाँ भाग
1: अंतर आ
0: दौड़ करने से
1: जाएगा।
0: उछल कूद करने से या कहीं से आप चल के गए हो तो उसमें बीपी आपका जाते अगर आप चेक कराओगे तो हो सकता है कि आपका बीपी ज़्यादा मिला,
1: जी
0: 140 मिला ऊपर वाला या 160 मिला या 170 मिला, तो मतलब 160 70 50 जो भी है ऊपर में मिला है तो आप उसी से मतलब चिंता में पड़ सकते हैं और दवाई भी शुरू हो सकती है,
1: जी
0: लेकिन कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा सा विश्राम करेंगे और विश्राम करने के बाद ही आपको बीपी
1: फिर
0: का
1: चेक
0: मेजरमेंट
1: करो
0: कराना चाहिए। जी
1: जी। डॉक्टर साहब इसमें अगर ज़्यादा होता है तो उसमें क्या लक्षण आएंगे? अच्छा एक और बात करें कि ज़्यादा और कम
0: जी जी
1: दोनों परिस्थितियों में क्या लक्षण रहेंगे?
0: देखिए सर अगर बीपी किसी का कम रहता है, जैसे महिलाएं गांव से आती थी हमारे पास ऐसे हॉस्पिटलों में, या ऐसे हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं अभी भी
1: जी
0: हॉस्पिटल में, तो वो कुछ लेडीज़ बोल के आते हैं कि बीपी कम है,
1: जी
0: हाँ वो उनकी बात बिल्कुल सही है उनका बीपी कम है, लेकिन उसके पीछे के कारण तक उनको जाना चाहिए, अगर शरीर में खनिज पदार्थों की अगर कमी है, मान लिया सोडियम की कमी है, क्लोराइड की कमी है, मैग्नीशियम है,
1: जी
0: कैल्शियम के हैं, या फिर किसी विटामिन या इस तरह के कोई खनिज पदार्थ की कमी है तो उस कमी को पूरा करना ही चाहिए। और ये भी हो सकता है कुछ हार्मोनल कारण भी होते हैं,
1: जी
0: जैसे महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन है एस्ट्रोजन है, तो ये कम बीपी की तरफ उसके शरीर को रखते ही रखते हैं, वो एक प्राकृतिक फिजियोलॉजिकल कारण है कि उनका बीपी थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में कम होता है,
1: कुदरती बात होती
0: कुदरती
1: है
0: कम होता है, लेकिन
1: जी
0: बार बार वो कम बीपी लेकर जाती हैं, सिर
1: जी
0: का दर्द है, चक्कर आ रहा है, ऐसे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, तो उनको अपना हार्मोनल जो चेकअप है वो भी कराना चाहिए, जैसे किडनी की जांच होनी चाहिए
1: जी
0: और थायराइड की जांच होनी चाहिए, शरीर में विटामिन डी है, कैल्शियम है, मिथाइल कोबालामीन है जिसको B12 बोलते हो आप, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कई बार BP, शरीर का कमज़ोर होना, हाथ पैरों में दर्द होना, रात को पैरों में बाइटे जिसको बोलते हैं, बाइटे आना,
1: जी
0: जैसे ऐठन सी आ जाती है, दर्द होता है,
1: जी
0: उसका कारण कुछ और मिलता है। बीपी वो अपने आप को मान लेते हैं कि मेरा तो बीपी कम रहता है इसलिए ये है, लेकिन महिलाओं का हार्मोन्स की वजह से बीपी पुरुषों की तुलना में कम होता है, लेकिन वो कम नहीं होता उनके हिसाब से, उनके मतलब जैसे नर है, मादा है,
1: जी जी
0: बच्चा है या बूढ़ा है या उसकी क्या उम्र हो, उसके हिसाब से उनका बीपी कम ही होता है महिलाओं का।
1: जी तो इसमें अगर किसी का ज़्यादा है तो उसमें क्या लक्षण
0: हाँ,
1: होने
0: अगर
1: चाहिए?
0: हाँ ज़्यादा है तो सर उसमें एक तो सिर दर्द की सामान्य समस्या होती है, घबराहट होती है,
1: जी
0: और छाती के अंदर दिल ऐसे लगेगा जैसे तो धड़ धड़ हो रही है, जैसे
1: अच्छा,
0: धड़ धड़ धड़ धड़ करके ना, उसको
1: दिल की
0: चक्कर,
1: धड़कन बढ़
0: हाँ
1: जाती है,
0: दिल की धड़कन बढ़ भी जाती है और उसको महसूस भी
1: तेज
0: होती है, जैसे
1: तेज
0: अंदर
1: बीतता
0: कुछ
1: है।
0: पंखा जिसको बोलते हैं ना,
1: जी जी
0: कुछ बुजुर्ग बोलते पंखा सा स्टार्ट हो गया, हाँ छाती के अंदर,
1: जी
0: तो वो महसूस होने लगता है।
1: जी
0: और सीधा पेशेंट आएगा बोलेगा जी घबराहट हो रही है, सिर का दर्द है, बेचैनी है, नींद का रात को ना आना,
1: जी
0: और इस तरह के अगर कोई लक्षण लेके आता है तो, और या फिर बार बार पेशाब कर रहे है वो पेशेंट, बार
1: अच्छा
0: बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है,
1: जी
0: तो ये कारण हो सकते हैं ज़्यादा BP होने का,
1: अच्छा
0: या चक्कर ही आ जाते हैं कई बार। कई बार तो वो पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको जैसे जो खून की नसें होती हैं सिर में, ज़्यादा BP की वजह से, या ठीक टाइम पे दवाई ना लेने की वजह से, या फिर दवाई लेकर शुरू कर देते हैं एकदम अचानक देसी अपनी मर्जी में, तो जंप कर जाता है BP, जैसे हम फुटबॉल एकदम से जंप करता है दीवार से टकराते ही वापस आता है,
1: जी
0: वैसे BP वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस टाइम पे हमारी खून की नसें का लचीलापन एक उम्र के बाद तो कम हो जाता है,
1: जी
0: तो दिमाग की नसें जैसे फट जाती हैं, तो उसकी वजह से वो ब्लीडिंग लेके आते हैं, फिर हमें पता लगता है कि बेहोश हो क्या है कोई बुजुर्ग
1: जी
0: या कोई माता या कोई पुरुष, तो फिर हम देखते हैं उसका CT स्कैन कराते हैं, तो बड़ा सा क्लोट मतलब बड़ा सा थक्का खून का ना दिमाग में
1: दिमाग
0: मिलता है,
1: जम
0: तो
1: जाता है।
0: बेहोशी हो गया जाता है वो, तो या
1: जी
0: फिर लकवा जिसको बोलते हैं, लकवा हो गया, लेफ्ट
1: जी
0: राइट या दोनों साइड का ही लकवा हो गया,
1: जी
0: इस तरह के पेशेंट आते हैं अक्सर हमारे पास।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की समस्या आ गई है किसी को तो फिर उसका क्या उपचार रहता है?
0: हाँ सर, उपचार ये है कि सबसे पहले तो आप कम से कम 3 बार एक प्रॉपर डॉक्टर डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर होना चाहिए,
1: जी
0: हाँ जैसे उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो, फिजिशियन हो एटलीस्ट, जिसको हम MD मेडिसिन बोलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो उससे ज़रूर परामर्श करना है, और ऐसा नहीं कि पहली बार गए और BP ज़्यादा और दवाई शुरू कर दी, लेकिन ये देखना पड़े किस रेंज में उसका BP है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है हाइपरटेंशन,
1: जी
0: और उसके पीछे के कारण क्या हैं, क्या शरीर में कहीं चर्बी ज़्यादा तो नहीं जिसको मोटापा बोलते हैं, मोटापा तो नहीं है, या फिर डायबिटीज़ साथ में मधुमेह है कि नहीं है,
1: जी
0: और उसका लाइफस्टाइल क्या है। आजकल लाइफस्टाइल एक तरह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, अफरा तफरी सी मची रहती है सबके ज़िंदगी में ना, तो वो भी BP का बड़ा कारण है।
1: मतलब कहीं ज़िंदगी में भाग दौड़ ज़्यादा है,
0: जी
1: कहीं
0: जी
1: ये कि आप एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ये दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं।
0: जी जी बिल्कुल प्रभावित करते हैं, साथ ही जैसे खान पान है, ज़्यादा फ्राइड ले रहे हैं आप,
1: जी
0: और मतलब कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता कि हम खा क्या रहे हैं, हम बचपन से सोचते हैं कि जो घर में मिल रहा है वो अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार घर में अच्छा नहीं मिल रहा होता है,
1: जी
0: कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि सुबह सुबह ना छोटे बच्चों को पराठे खिलाए जाते हैं
1: जी
0: घी में या तेल में,
1: जी
0: रिफाइंड ऑयल वगैरह में मिला के, तो वो सोचते हैं कि यही होता होगा,
1: जी
0: यही अच्छा
1: जी
0: खान पान होता
1: जी
0: होगा,
1: जी
0: वो बचपन से ही फ्राइड लेके आ रहे हैं, मतलब फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी धमनियों के अंदर ना वो लचीलापन, जैसे आप कोई बचपन से ही इस तरह की चीज़ें खा रहा है, मैदा की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, तेल की फ्राई की हुई नमकीन भुजिया टाइप की इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है,
1: जी
0: तो उसका जो लचीलापन होता है धमनियों का, आर्टरीज का, वो कम टाइम के साथ कम होता चला जाता है, और वो कम होता चला जाएगा तो उसी को हम फिर धीरे धीरे वो रक्तचाप की बीमारी से,
1: समस्या
0: घर
1: है।
0: समस्या से ग्रसित हो जाता है।
1: जी
0: जी,
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें फिर उपचार क्या रहता है? दवाई है
0: जी
1: वो
0: जी
1: कितनी कितनी समय खानी
0: हाँ
1: पड़ती
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: क्या उसका
0: जी
1: तरीका
0: जी
1: रहता है?
0: मैंने बताया था कि सबसे पहले तो अगर आपको BP की समस्या लगती है कि है, तो सबसे पहले फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए,
1: जी
0: डॉक्टर हो एटलीस्ट, प्रैक्टिशनर्स हो कोई अच्छा,
1: जी जी
0: हाँ तो डॉक्टर है तो उसके पास जाके एटलीस्ट 3 रीडिंग, घर पे भी आप चार्ट बना सकते हैं, कागज़ पे लिख सकते हैं
1: जी
0: कि जैसे घर पे भी मशीन ला सकते हैं अगर आपको डाउट है,
1: जी
0: सस्ती सी मशीन आती है मेरे ख्याल में 1000-1500 की आती है, और वो उससे आजकल डिजिटल आती हैं
1: जी
0: बैटरी वाली, तो उससे
1: जी
0: आप अपना बीपी अलग अलग समय पर नाप सकते हैं, लेकिन हमेशा बीपी मापेंगे रेस्ट करने के बाद,
1: आराम करके फिर
0: लेट
1: जी
0: के हैं,
1: जी
0: ऐसा नहीं।

0: ये आप खुद ही बीपी माप रहे हो, खुद ही बैठे हो, परेशान भी हो, बीपी ऐसे नहीं, उसका एक चार्ट बना लीजिए,
1: जी
0: हफ्ते भर आप घर में रिकॉर्ड कीजिए भी इस टाइम पर मेरा ये बीपी आया है।
1: जी
0: उसके बाद वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो फिर डॉक्टर भी नापेगा, अगर सच में ही अगर बीपी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई देते हैं डॉक्टर साहब हैं।
1: जी
0: और साथ ही साथ दवाई का सेवन नियमित करना है, ऐसा नहीं है कि जैसे एक मिथक सा रहता है कि जी बीपी हो गया है, मतलब हमारे समाज में लोग बीपी तभी मानते हैं जब उसका सिर घूम रहा होता है, चक्कर आ
1: जी
0: रहे होते हैं
1: जी
0: और बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है, या हार्ट की दिक्कत, पैल्पिटेशन, छाती में घबराहट और ये फड़फड़ाहट सी महसूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस टाइम पे उसको बीपी मान दे जब 180-200 की स्पीड से चल रहा होता है उनका ब्लड
1: जी
0: प्रेशर ना,
1: जी
0: तो कम जो अगर मेजरमेंट जो हमने अगर 140 अगर उसका उच्चतम अगर सीमा रेखा बनाई है
1: जी
0: और 140 से अगर आपका बार बार ज़्यादा आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर साहब आपको दवाई लिखेंगे, अलग अलग जैसे इनके होते हैं बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, या अलग अलग जो मेडिसिन्स आती हैं
1: जी
0: वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनका नियमित सेवन कीजिए। ये मत डरिए कि आपको बीपी की, एक मिथक ये भी रहता है कि जी बीपी की आदत पड़ जाती है हमें
1: आदत
0: बीपी की
1: पड़
0: गोली
1: जाएगी।
0: लेने की ना,
1: हाँ
0: तो अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि आज तक तो देखो इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते करते ना,
1: जी
0: इतने सालों के बाद भी मैं यही सुनने को मिलता है, कोई भी पेशेंट आता है गंभीर होके तो कहता है जी मैंने तो इसलिए छोड़ दी शुगर की दवाई या फिर बीपी, कहीं आदत ना पड़ जाए शरीर
1: हाँ
0: को,
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: हम किसी डिप्रेशन के पेशेंट को देते हैं नींद वाली गोलियां तो वो कहता है जी आदत ना पड़ जाए इसलिए छोड़ छाड़ दी
1: छोड़
0: थी मैंने,
1: दी।
0: तो ये जो आदत ना पड़ जाए ऐसा कुछ
1: भ्रांति
0: नहीं
1: है।
0: है, भ्रांति
1: जी
0: है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है।
1: जी
0: मैं तो उनको हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जो 10 साल तक हमारे लगभग प्रधानमंत्री रहे हैं,
1: जी
0: उनके उनको हाइपरटेंशन मतलब बीपी की समस्या भी थी, उनको शुगर भी था और उनकी हार्ट की सारी नसें भी बंद थी, उन्होंने हमारे ही देश के एम्स में उनका ऑपरेशन हुआ था,
1: जी
0: ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और
1: जी
0: उनके हमने नहीं वो उनको नलकियाँ जिसको बोलेंगे ना
1: जी
0: वो ग्राफ्टिंग की वहाँ पे, और उसके बाद देखो लंबे समय तक जिंदा रहे, लेकिन
1: जी
0: उनका ये था बड़े समझदार थे वो
1: जी
0: टाइम पे दवाइयाँ लेते थे। अभी देखिए वो उन्होंने बीपी की समस्या मान लिया, वो उन्होंने 50 साल तक वो उन्होंने उसको सहा बीमारी को, लेकिन 50 साल तक नियमित सेवन करने के बाद वो जिए भी तो देखो लगभग 90 साल
1: जी
0: है ना हो के
1: जी
0: उनका स्वर्गवास हुआ, 90 से भी
1: जी
0: ज़्यादा। तो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, जब प्रधानमंत्री होकर कोई इंसान टाइम पे बीपी शुगर और जो बीमारी है उसकी दवाई खा सकता है तो हम और आप तो खानी
1: जी
0: चाहिए, अगर कोई बीपी है तो उसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। कई
1: जी
0: बार हम एक्सेप्ट नहीं करते हमारे शरीर को लेके
1: जी
0: कि मेरे को ये बीमारी होगी, अरे कैसे होगी मैं देखता हूँ इस बीमारी को, बस यही जदोहद चलती रहती है, फिर एक ना एक दिन वो कभी लकवालुक वाले की स्ट्रोक वगैरह इस तरह की कोई गंभीर समस्या है, हार्ट अटैक
1: जी
0: मतलब एमआई लेके आते
1: अब
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात करेंगे कि
0: जी जी
1: खान पान और जो हमारा एक्सरसाइज है, प्राणायाम वगैरह है, इनका क्या
0: जी
1: योगदान
0: जी
1: रहता
0: जी
1: है?
0: जितना रोल दवाई का है उसके बराबर ही रोल हमारे खान पान का है,
1: जी
0: उसमें घी तेल का सेवन सेवन मतलब थोड़ा सा कीजिए जो ज़रूरी है,
1: जी
0: हल्का सा उसका सेवन कीजिए तेल और घी का अगर करना भी पड़ रहा है तो। दूसरा क्या है, नमक,
1: जी
0: नमक जो नमकीन चीज़ें हम खाते हैं जैसे अचार खाते हैं, नमकीन चीज़ें खाते हैं, नमकीन बिस्किट है या इस तरह का सब्जी में ज़्यादा मसाला डाल के खाते हैं,
1: जी
0: मेरा तो पूरी एक तरह से मैंने स्टडी कर रखी है, स्टडी इन द सेंस एक तरह से हमारे
1: अध्ययन
0: प्रैक्टिस में
1: कर
0: मैंने
1: रखे
0: देखा,
1: हैं।
0: अध्ययन कर
1: जी
0: रखा है गाँव से, मैं ये बता देता हूँ कि वो फलाने कुनबे से या फिर फलाने एरिया से आए हैं तो वहाँ का जो खान पान बड़ा मसालेदार है, और
1: जी
0: सच में
1: जी
0: ही वो जो ही 45-45 की उम्र में धुआंधार बीपी लेके आते हैं वे लोग, खान पान
1: जी
0: का सहारा है, ज़्यादा
1: जी
0: नमक का सेवन है, ज़्यादा मिर्च नमक से
1: जी
0: बने हुए खाद्य पदार्थ का जो सेवन करता है
1: जी
0: उसको बीपी हो ही जाता है 40-50 साल की उम्र में ही। दूसरा है जो भाई ज़्यादा वॉक मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, तो मैं इनको सबको ही बोलता हूँ और ज़रूरी भी है, लगभग 5 से 7 किलोमीटर की वॉक अगर हमें सुबह से हम समय नहीं मिलता तो चाहे दोपहर में आपको वॉक करने को मिल जाए तो वॉक ज़रूर कीजिए। कहीं बिल्डिंग में जाते हैं तो लिफ्ट का प्रयोग मत कीजिए, अगर आपके घुटने का दर्द नहीं है तो आप सीढ़ियों से चढ़
1: सीढ़ी
0: के ही कोशिश कीजिए, जितना कोशिश कीजिए हो सकता है उतना,
1: जी
0: चाहे वो हमें पैदल चलना पड़े चाहे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े तो आदत डालिए, क्योंकि जितना एक्सरसाइज और खान पान का महत्व है उतना ही दवाई का, और जितना दवाई का है उतना ही खान पान और योगा का और इन चीज़ों का महत्व बराबर बराबर है।
1: जी
0: तो एक्सरसाइज कभी मत भूलिए, अगर एक्सरसाइज
1: जी
0: अगर एक्सरसाइज

0: में आपको दिक्कत आ रही है तो बीपी का दवाई भी ले रहे हैं तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, समतल ज़मीन पर आप 5 से 7 किलोमीटर की वॉक कीजिए, और खान पान में ज़्यादा फल और सब्जियों और सलाद का प्रयोग कीजिए, जो भी सीज़न में हो, जो सबसे सस्ती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत महंगा सलाद लेके खाइए, जो उस सीज़न में जो सबसे सस्ता हो वो लेके खाइए ज़्यादा मात्रा में। पानी नियमित रूप से पीजिए, और थोड़ा सा एक अपने जैसे जीवन में बड़ी टेंशन रहती है तो यार दोस्तों में बैठ करके, बूढ़े बुजुर्गों में ज़रूर बैठिए, अपने से एज ग्रुप से अलग सीनियर जो एज ग्रुप होता है उसके साथ बैठिए, हो सकता है वो आपकी बात ही बातों में 70 समस्याएं वैसे ही सुलझा देंगे वे लोग। तो आज कहाँ आपको बैठना है, कहाँ आपको वॉक करनी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है, क्या आपको खान पान करना है, फल सब्जियों से कितनी दोस्ती करनी है, बुज़ुर्गों से दोस्ती करनी है ना। तो इस तरह से आप अपनी मतलब मुझे लगता है कि 99% जो बीमारियाँ हैं खासकर बीपी है तो उसको आप सुलझा सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया है कि अपने खान पान का ध्यान रखें और नियमित जांच करवाते रहें, और एकदम से ये ना सोचें कि भी आपको ये बीमारी होगी है। हाँ, अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, समय पर अपनी जांच करवाएं, समय पर अपनी दवाई लें। और आपने बताया भी हमारा खान पान है वो सही है, सलाद सब्जी और इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करें, और ज़्यादा घी तेल की जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा बच के रहें, और आजकल जो फास्ट फूड गाँव में भी पहुँच गए हैं उनको भी इस्तेमाल ना करें, खुद भी और बच्चों को भी इस्तेमाल ना करने दें। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से हम बचे रह सकते हैं। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर परमेल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
2: ये तो सुनी भाया ने पूर्व प्रसारित बातचीत भाई उच्च रक्तचाप कारण उपचार डॉक्टर परमेल चौधरी जी अपने चौपाल में आए थे, और भाई भयन सुनवाऊंगे रागनी, और गायक कलाकार इसमें रहेंगे बाली शर्मा और उनके साथी। तो सुने भाई ये रागनी।

ਹੋਵਣ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕਰੀ

हर गिदना सर मा।

यह तो सुनी भाई नरागनी बाली शर्मा और साथियों की गाई हुई। और भाइयों ईब देख ले हैं घड़ी का नहीं, इसी के साथ भाइयों ग्रामीण संसार कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। चलेंगे सारे भण भाइयों ने, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है 7:30:10। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की। अनिल पांडे ने इस गीत को लिखा है और इसके लिए धुन बनाई संदीश सांडलिया ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म से गाना। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। समीर का लिखा ये गाना है और इसके लिए धुन बनाई अनु मलिक ने।

0: आपके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये तो हमने संदेश सुना और अब फिल्म संगीत कार्यक्रम में शामिल करते हैं समीर का लिखा गाना जिसके लिए धुन बनाई नदीम श्रवण ने। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम आदमी खिलौना है।

आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए सुने छोटा सा घर। इस फिल्म से गीत आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। इंदिवर का लिखा ये गीत है और इसके लिए धुन बनाई राजेश रोशन ने।

छोटा सा घर फिल्म से गीत हमने सुना, आइए अब सुनिए सोल्जर फिल्म से गाना। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है।

चलते चलते, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर ने इस गीत को रचा और इसके लिए धुन बनाई जतिन ललित ने।

सुनिधि चौहान और शान की आवाज़ों में तारा रमपम फिल्म से गीत हमने सुना, जिसे रचा था जावेद अख्तर ने और इसके लिए तर्ज बनाई थी विशाल शेखर ने। आइए अब सुनते हैं बरसात की रात फिल्म से गाना, जिसमें स्वर हैं कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज़ और साथियों के, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, बादल फिल्म से गीत हमने सुना जिसमें आवाज़ें थी सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। आज कलाकार हैं फरीदा खानम, सुनते हैं इनके आवाज़ में कुछ गज़लें।

со сутеем и рассемена, а только горнацией, эпирка сатсанги.

भजन रागनी सुनी, गायक कलाकार थे श्री भगवान शर्मा और उनके साथी। अगली रागनी सुनांगे पाले राम दैया और उनके साथियों की गाई ओड और पसंद भेजनी है गांव बीत दलते सिंधु प्रजापत, मामन प्रजापत, सुखबीर, शीला, सचिन, सुमित, संतरा, मोहित और उनका सारा परिवार। गांव गुण अत चिट्ठी आई है और पसंद भेजनी है चंद्र सिंह, मोटा, मोहित और विकी। ये हमारे श्रोता हैं गांव के ठाणा ते करतार सिंह डांडा, सुमन डांडा, दिव्यम, कृष्ण, शोभचंद, धर्म नंबरदार और गीसानंद। गांव भाणा ब्राह्मणन ते ये हमारे श्रोता हैं मेघराज शर्मा, गौरव, सौरभ, विनय, लेखु, अजय, जितेंद्र और योगेंद्र। दादरी गेट भिवानी ते चिट्ठी आई है और पसंद भेजनी है राम अवतार दोयाणिया। तो भाई सुना अपनी पसंद की पाले राम दैया और उनके साथियों की गाई ओड या रागनी।

भैया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे पाले रामदैया और उनके साथी। अगली रागनी सुनांगे महावीर चोपड़ा और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजनी है आप सब। दादरी गेट भिवानी ते कृष्ण मेरा, कोमल मेरा, किरण कपिल और कुणाल मेरा, खेड़ी चोपटा जिलाई सारते हैं पंडित सत्तारेड़ी, राजा राम पुनिया, रामेर शर्मा और किताब सिंह सौरान। सादुल शहर ते चिट्ठी आई है, पसंद भेजनी है ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। गांव बाता जिला कैथल ते चिट्ठी आई है, पसंद भेजनी है चांदी राम चंदेल, गुरमित, कमल, नीरज चंदेल। कस्बा जुलाना ते हमारे श्रोता है पंडित महावीर शास्त्री, गाँव झिंझर ते मास्य सतवीर शर्मा, कौशल्या बाल्या और उनका पूरा परिवार। तो भाई सुने महावीर चोपड़ा और उनके साथियों की गाई ओड़ या रागनी।

मारे कैसे अन्यर भाग गाते फूल जड़ी।

नाच करेगी उड़ना अयानी बन करेगी मोहाज करेगी बैठी उड़िया अज्ञानी बन करेगी ताज की रक्षक रे सदाया

0: भाईया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे महावीर चोपड़ा और उनके साथी, और कार्यक्रम की अगली रागनी सुनाएंगे बाली शर्मा और उनके साथियों की गाई ओड़, और पसंद भेजनी है आप सब। आदर्श गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा, ती हमारे श्रोता है दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, गर्विश बंसल और तमन्ना, ये हमारे श्रोता है। कनेरा मोहल्ला पटियाला थे मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू निहारिका और वंश बत्ता, रावर करनाल थे, या चिट्ठियाई है पसंद भेजनी है ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, अलीकड़ वाली थे बसंत कुमार चांद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, और यह चिट्ठी आई है लाल मस्जिद भिवानी थे पसंद भेजनी है शीला देवी, लक्ष्मी नारायण पोपली, सत्यम पोपली, दर्शय, समर, परवीन, अमित, बेटी ज्योति, तुलसी, गीता, दीक्षा और निश्चित रहेजा। तो भाई सुना अपनी पसंद की बाली शर्मा उनके साथियों की गाई उड़ या रागनी।
1: हे रे डोडी ऊपर नजर गई, वो या अदली खा खड़िया

दरवाजे पे, भाई दरवाजे पे लिख के लाजी दरखास्त जाए।

ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਵੇਗਾ ਜੈਨੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ।

कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे नरसिंह और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजी है आप सबने। महेंद्रगढ़ से विकास गांधी, ममता गांधी, वंश दिया, नोनू सगुन और विकी गांधी, गांव अलेवा जिला जीनते, राजकुमार लोहान, नरेश लोहान, जोगेंद्र लोहान और उनका पूरा परिवार। मलोट कैंप पंजाब से हमारे श्रोता है सतीश मिगलानी, सीमा, साइना, विशाल, सुप्रिया और धर्मपाल। अलीगढ़ वाले से हमारे श्रोता है रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरवजीत, राणी, सोनू और रजनी। यह चिट्ठी आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब ते, पसंद भेजनी है मिरक विका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और हरदेव मिका। तो सुना अपनी पसंद की नरसिंह और उनके साथियों की गाई ओड रागनी।

भाईजन रागनी सुने गायक कलाकार थे नर सिंह और उनके साथी, और कार्यक्रम का आखिर में सुनेंगे बाबूराम दैया और उनके साथियों की गाई और रागनी। और पसंद भेजनी है गांव हिरण छप्पर यमुनानगर ते जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और विनोद धीमान। लोको कॉलोनी लाहौर ते यह चिट्ठी आई है और पसंद भेजनी है बिल्लू सिंह चंडालिया, सुरेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र, करमबीर और लक्ष्मी देवी। बटिंडा रोड डबवाली ते चिट्ठी आई है, पसंद भेजनी है राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित नारंग। गांव फरासी ते राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। आसी शहर ते राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। और ये हमारे श्रोता है गाँव कायला ते प्रकाश चंद वोकल, आधुनिक वोकल, पुनीत कुमार, अजीत, संदीप, सक्षम, कमला, कविता, सीमा, प्रियंका, मुस्कान और अलीग साहब वोकल। और यह चिट्ठी आई है मोहला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब ते, पसंद भेजनी है विनोदपुरी, अशोक, सुशील, बीके पुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन, गुंजन, लालसा, रमा, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोद, पाली, डीसी और अरुण पुरी। तो वे सुना अपनी पसंद की बाबूराम दैया और उनके साथियों की गाई और यारागनी।

0: भाईजान रागनी सुनी, गायक कलाकार थे बाबू राम दैया और उनके साथी, और इस रागनी के साथ कार्यक्रम का समय बहुत समाप्त है। कार्यक्रम आपने किसा लगा यो बतावें, और जो अपनी पसंद की रागनी भाई सुनना चाहे हैं वो चिट्ठी भेजें। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम थारी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड 124001, और ईब दलजीत भाई ने जाजे दे दो। सारे वन भाइया ने राम राम।
1: आप सुन रहे थे थारी पसंद कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर।

मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। संतोष शेखावत की ओर से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की चिट्ठियों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे हमने महानंदा फिल्म से लिया है। आवाज़ है आशा ताई की, मोहन काव्या का लिखा ये गीत है और मानस मुखर्जी का संगीत है। पसंद आप सभी की है। आप हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से चिट्ठी मिली है। लिखने वाले श्रोता हैं बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार राय और हैप्पी राय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी राय प्रांचल राय शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश प्रीति राय और नवनीत राय। ये खत हमें मिला है सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से। लिखने वाले हैं प्रकाश बोरगांवकर सुषमा प्रकाश प्राजक्ता प्रांजलि सोहम बोरगांवकर हैं इनके साथ। ये खत मिला है अलीका डबवाली से। लिखने वाले श्रोता हैं बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी और आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी इशिका यादव और तेजल यादव।

महानंदा फिल्म से गीत हमने सुना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं मीरा साया फिल्म से गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को रचा है। इसके लिए धुन बनाई मदन मोहन ने और पसंद आपसे भी की है। आप हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित हैं इनके साथ। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा की चिट्ठी हमें मिली है। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडके, नंदा बोडके, हनुमान, उत्तम जमदाडे और स्वराज जमदाडे। आप हैं सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। ये खत हमें मिला है ग्राम पंचायत बठेना से। लिखने वाले साथी हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारागांव से आप हैं सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। और आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता।

मन्ना डे की आवाज़ में वक्त फिल्म से गीत हमने सुना, साहिर के बोल थे, रवि का संगीत था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं जीने की राह फिल्म से गाना। आवाज़ लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इन दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश इस प्रकार से है। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक जावेंद्र कुमार वर्मा है इनके साथ। ये श्रोता हैं मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी विकास इंदौरा, प्रियंका रमन इंदौरा, रितु भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना। आप हैं प्रमिलागंज आलूट ज़िला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा हैं इनके साथ। ये श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का खत हमें मिला है। इसके अलावा आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी ठाकुर, सूरज सुजला, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर हैं इनके साथ। और ये चिट्ठी हमें मिली है जालंधर से चकला बाजार सामाना से पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल।

आकाशवाणी रोहतक से है मन चाहे गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आप सुनते हैं जंगली फिल्म से गाना, आवाज़ लता मंगेशकर की है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत को सुनवाने के लिए फरमाइशी खत आप सभी ने लिख भेजी है। आप हैं जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से, बाबा साहेब वाडोदी, मीनाक्षी चरपी, रजनी कानेरी, कार्तिक युवराज। और ये श्रोता है धामणी मनुरा से, पेंटर तुलसीराम डेरी, मायावती डेरी, संदेश अनमोल, गुलशन आदेश डेरी, किरण प्रज्वल और ददुल्ला। ये ख़त हमें मिला है बेरडी से, लिखने वाले हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तन्नू करमरकर हैं इनके साथ। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदेव जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। और ये चिट्ठी हमें मिली है राजनगर मधुबनी से, लिखने वाले श्रोता हैं कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र, रिद्धि ऐश बाग पिली कॉलोनी लखनऊ से। आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम, पलक पंखुरी गुप्ता, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से चिट्ठी लिख भेजते हैं। मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन हैं इनके साथ। ये श्रोता हैं नया पारा भिरई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, इसरराज सूर्यवंशी, चंद्रकांत, प्राची सूर्यवंशी और कुमारी टीयूषी सूर्यवंशी। और आप हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, नरमिंदर तनेजा, संदीप गुगलानी, सुनीता जतिन, सुनीता शर्मा और किरण ठाकुर हैं इनके साथ।

जंगली फिल्म से गाना हमने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। हसरत जयपुरी ने इस गीत को रचा था और इसके लिए धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: अभी आप सुन रही थी मन चाहे गीत कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। रात्रि के 11 बजते हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। रिले कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam.